0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: भाई मस्ती मैडनेस चल रहा है और हम भी नहीं नॉट फार्ट करते हुए बट विदाउट फार्टिंग यहाँ पर पहुंच चुके हैं. नीरन का प्लान कर रही है वैसे भी कि कैसे लंबी वाली की जाए टू मैनिफेस्ट.
2: ये बात हो रही है मेरी पिछली खबर के बारे में जहां पर कहा गया था कि जब आप किसी को याद करते हो और चाहते हो इंसान आपको याद करे तो जब आप फार्ट करें तब उसका नाम ले और साथ में मंत्र बोले प्रिम प्रिम प्रिम प्रिम प्रिम प्रिम प्रिम.
3: Oh God, I can only visualize and imagine people doing that.
2: कुछ भी बोलते हैं लोग रील्स में, कुछ भी बोलते हैं और वो सोचते हैं कि ये फॉलो होगा.
3: सिंसेरिटी के साथ बोलते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि लगे आपको कि उसमें कुछ आप शक वक करो. बट एनीवेज ऐसे ही यूनिक यूनिक लोगों को हम लेके आते हैं मस्ती मैडनेस में, उनकी बात करते हैं. इतने ही यूनिक है ये नॉर्वेनियन जो बंदी है, ठीक है. उसका पॉपुलरली शी इज नोन एज कंडम थोंजे.
2: अच्छा,
3: उसका नाम ही रख दिया गया है क्योंकि उसकी एक बहुत ही अनयूजुअल सी उसने हॉबी जो है कर रखी है. शी हैज दिस कलेक्शन ऑफ नियरली 2000 यूज्ड कंडम्स व्हिच she says that she began collecting 2010 mein and she has displayed them apne bedroom ke wall pe and you know then she is saying also usme interview mein ki it includes items which I've gathered from the you know the partners, some strangers and then some rare purchases. I sometimes feel watching these videos that you know this is the level of confidence at times we need, like the fearless kind, like you can say whatever you want to say
2: 2000
3: and without being apologetic about it at all.
2: 2000 used condoms, did you say that?
3: 2000
2: aur uske andar saman hai ya khali hai, matlab sorry too much information. matlab TMI. Nahin. You don't have to answer
3: TMI,
2: it.
3: No. Her bedroom must be smelling like hell.
2: That is what I was coming to next. Ki rakhti kahan hai? Matlab, are you serious? 2000 used condoms? Aur karegi kya? Kyun kooda ikattha kar rahi hai ye? Kya baat hai?
3: Woh bhi 2010 ke rakhe hue. Renuka, imagine. Batai. I mean... मेरी तो नाक अभी बंद हो गई सोचते हुए.
2: और ये सब इसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है या खरीदे भी हुए हैं?
3: नहीं, सब पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसने लिटरली अपने बेडरूम के दीवार पे चिपका रखे हैं.
2: सो अब सोचो 16 साल में 300 दिन अप्रोक्सीमेटली 300 दिन

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: तुम कभी चिट्टौनी विलेज गई हो, चिट्टौनी गांव गई हो तुम कि नहीं गई हो अंतरा? सोच के बताओ
1: नहीं।
0: मुझे
1: नहीं नहीं गई।
0: सच अ हैपनिंग प्लेस।
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस।
3: टेल मी मोर अबाउट इट। नाम जो है काफी ही यूनिक सा है।
0: जी बिल्कुल। तो क्या हो रहा था कि वहां पर हाल ही में एक शादी हो रही थी, मतलब काफी ड्रामेटिक हो गई। हुआ कुछ ऐसे कि पिछले हफ्ते की बात है और वहां पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे कहते हैं ना, चिट्टौनी विलेज में अनफोल्ड हुआ, जब जो ब्राइड थी जिसकी शादी उसके डैडी ने अरेंज करी थी, वो जयमाला सेरेमनी की मतलब हो रही थी शुरुआत। तो फिर क्या हुआ, उसी टाइम उसका जो लवर है, अ यूथ फ्रॉम भटोली विलेज अंडर चोलापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स, वो पहुंच गया वहां पर, ठीक है, और उसने कहा शादी तो मुझे करनी है इसके साथ, मतलब मैं ही करूंगा इसके साथ शादी। अब सोच कि लड़की शादी हो रही है, जयमाला शुरू हो रही है, एंड देन सडनली दिस गाय कम्स, मैं करूंगा शादी। अब काफी ऑब्वियसली सारे रिश्तेदार बड़े हैरान हो गए कि ये क्या है। उन्होंने लड़के को पकड़ा और पीटना शुरू किया, लेकिन फिर वो जो प्यार था, वो जो दुल्हन थी, जो दुल्हन के कपड़ों में अपने 16 सिंगार किए दूसरे पराए घर जा रही थी, वह उतरी स्टेज से और उसने उस लवर को शील्ड किया, ऊपर लेट गई उसके और कहती नहीं मत मारो, कोई पत्थर से ना मारी। हाँ, और फिर उसके बाद उसने बोला कि देखो हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं पिछले 6 सालों से। अब जो पति होने वाला पति था, ग्रूम, उसने कहा 6 सालों से, ओ माय गॉड, यहाँ तो क्या क्या नहीं हो गया होगा, है ना। तो उसने बोला आई विड्रॉ योर ऑनर, और वो वहां से वेन्यू छोड़ के वहां से चला गया। उसके बाद पुलिस पहुंची वहां पर क्योंकि लड़ाइयां तो इतनी हो गई थी। तो फिर जो दुल्हन की जो डैडी हैं, उन्होंने कहा कि भाई उनको पता था अपनी बेटी के इस रिश्ते के बारे में, लेकिन उनको नहीं पसंद था कि इस तरह से कुछ हो, इसलिए वो जबरदस्ती करा रहे थे। फिर खुशी खुशी वहां पर शादी हो गई।
3: And baby, that is how the movie, Bollywood movie, ends over here.
1: एक ही बार में पूरी फिल्म की कहानी बताती हुई हमारी रेणुका।
0: But imagine, so Bollywood, right? So Bollywood.
1: Very, very, like too much. Like 90s Bollywood ज़्यादा लग रहा था ये.
0: Totally, I agree. ये तेरे शो के लिए.
4: You're tuned into Radio Masti 24/7 live. Keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. A future man.

0: Sala.
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
2: क्या क्या चीजें चल रही है इस मस्ती मादनस की दुनिया में, आइए आपको बताएं ऐसी ऐसी चीजें जो ना आपने सोची नहीं होंगी, समझी नहीं होंगी, और आपके नेटवर्क एरिया से तो डेफिनेटली बहुत बाहर है। मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है
3: गैस्ट्रोनॉमिक खबरों के लिए। जी हाँ बिल्कुल, आप सही जगह पधारे हैं। इस जगह का नाम है मस्ती मैडनेस और ये है फ्राइडे। अगर आप ऑन कोर्स सुन रहे हैं ना, तो फिर क्या है अंतरा, कब है सैटरडे है ना,
2: वाह शाम को, शाम को वो भी बताइए, दो
3: बता दे
2: पॉइंट नंबर ग्लेम है तो ये भी। हाँ
3: इस समय बज रहे हैं 6:45 के आसपास।
2: क्या वेरी नाइस। कोई नहीं, अब मैं काम की बात बता देती हूँ जो खबर का आप वेट कर रही है, तो आपको पता ही होगा जो इन्होंने बोल दिया है ऑलरेडी। सो वेल, बात कुछ ऐसी है कि ये जो हमारी 22 साल की ठीक है मॉडल है, इनका नाम है शेरी, ठीक है
3: okay.
2: अब इनकी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है। अब वो दिक्कत उनके फ्यूचर को लेकर हुई कि उनको अपनी नाक जो है वो पसंद नहीं,
3: ठीक है। हाँ
2: अब उन्होंने सोचा कि मेरी ये जो नाक है, मैं नहीं चाहती जो है मेरे आगे जब मेरे बच्चे हो तो उनको भी ऐसे मिले, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए।
3: हाँ
2: बहुत सोच समझने के बाद शी गॉट अ नोज जॉब, ठीक है, शी गॉट अ न्यू नोज, ऑलराइट, एंड देन शी सेड आई डोंट वांट माय किड्स टू ग्रो अप बीइंग मेड फन ऑफ लाइक आई वाज फॉर माय अगली नोज, आई वांट टू पास देम डाउन अ मोर नेचुरल नोज टू देम।
3: बहुत बढ़िया।
2: अब रेणुका, इनको कौन, आप बताओगे मैं बताऊंगी, कौन बताएगा इनको कि प्रॉब्लम कहाँ पे है?
3: प्रॉब्लम दिमाग में है, आई थिंक इनको दिमाग को बदलने की बात करनी चाहिए। नाक वाक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाक की सर्जरी कराने से क्या जीन्स में चले जाएंगे, अच्छे नाक है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो।
2: I think that is a better way to go for it.
3: Exactly.
2: What do you look at, guy? I want someone with a good nose.
3: I know. और अगर तुम्हें अपने आगे जाके बेटा चाहिए और बेटे का सामान बहुत अच्छा चाहिए, सब कुछ चाहिए, then you know what to look for in yeah.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: What?

0: ऑलराइट, अगली खबर है बिहार से। जी हाँ, बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन से मैं एक खबर लेकर आई हूँ और अंतरा जी आपको ये खबर सुननी ही पड़ेगी।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: बिल्कुल सुन लेंगे, मतलब ऑप्शन थोड़ी ना है यहाँ पे, तो हम यही सारी बातें करने आए हैं।
0: मुझे पता था ये यही बोलेगी, ऑप्शन क्या है, सुनना तो पड़ेगा ही। तो भाई आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज ये जरूर सुने कि क्या है कि बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन में एक औरत बैठकर ना बेच रही थी खीरे, ओके, और एक हरे रंग का लिक्विड जो कि वहां पर उसने फैलाया हुआ था, वो खीरों को उससे कलर कर रही थी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये ग्रीन पेंट कह लीजिए या कलरिंग लिक्विड कह लीजिए, बेसिकली इट वाज टू मेक श्योर कि वो जो सारे के सारे खीरे हैं ना, द क्यूकम्बर्स, दे एक्चुअली लुक वेरी वेरी शार्प एंड वेरी वेरी फ्रेश। अब क्या है कि कुछ लोगों ने ये वीडियो लिया और उसके बाद कहा कि भाई साहब ये किस तरह से बुद्धू बना रहे हो, तो वह ऐसा बुद्धू बना के थोड़ा कर सकते हो। तो हाँ, तो सोचो कि हम किस तरह से क्या चीजें खाते हैं कि हाँ बड़े खिले खिले फ्रेश फ्रेश यू नो दिख रहे हैं। बट उससे मेरे को याद आया हमारे जीजी मार्ट के मैंगोज। मैंने दो डब्बे घर में खाए हैं अंतरा, एंड आई एम नॉट किडिंग। उन्होंने हमको गारंटी दी है कि इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कुछ नहीं है, एंड दैट इज व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि द टेस्ट स्पेशली ऑफ द देवगढ़ मैंगोज, आई टेल यू आई हैव नेवर ईटन सच मैंगोज।
2: अरे मैंने भी, तो तब भी तो मैं सबको बोलती फिरती हूँ अपने शो में दैट आई हैव आल्सो ऑर्डर्ड, आई हैव ईटन एंड आई हैव बीन ड्रूलिंग। मतलब इतना क्रेजी, आई थिंक इतने साल हो गए सिंगापुर में, मैं इतना क्रेजी आम के पीछे कभी नहीं हुई जितना इस बार हुई जीजी मार्ट ऑनलाइन के एग्जिस्टेंस से।
0: बिल्कुल, एंड आई टेल यू मैंने पहली बार आमों को समझा है बाय जीजी मार्ट ऑनलाइन डॉट कॉम। मैंने एक्चुअली समझा है द वे दे फ्लाई देम, द वे दे टेल अस हाउ टू प्रिजर्व देम, मतलब फ्रिज में कैसे रखो या उसका कवर्स कैसे उतारो एंड ऑल दैट, एंड द वे ही गारंटीज कि मैं आपको कह रहा हूँ कि दो हफ्ते भी रख सकते हो ये आम नहीं खराब होंगे, काले नहीं होंगे, बिकॉज इसमें कोई केमिकल्स ही नहीं है। टरा, सो गाइज इफ यू हैव नॉट ऑर्डर्ड द जीजी मार्ट ऑनलाइन डॉट कॉम, दैट्स वेयर यू गॉट टू गो एंड ऑर्डर राइट अवे। हम मिलेंगे अगले घंटे, ठीक है अंतरा?
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore. Check

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।

0: और हमारे तीसरे घंटे में यहाँ पर लग रहा है कि अंतरा जी इज ऑल गियर्ड अप, अपनी खबर को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रही है, फिर से गर्दन हिला हिला के, हाँ हाँ हाँ जल्दी जल्दी जल्दी मेरी बारी है, तुम्हारी ही बारी है, मैं किसी की बारी में बीच में नहीं आती, नेवर।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: आई एम रियली गोइंग टू टेल यू अ क्रेजी क्रेजी थिंग एंड हाउ किस लेवल तक सारी चीजें जा रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सतर्क भी करना चाहती हूँ, इट्स फॉर मी, इट्स फॉर एवरीबडी हु लव्स टू क्लिक सेल्फीज आल्सो, बट वेल यस। सो ये जो हम सेल्फियां खींचते हैं आजकल जो है कुछ स्टैंडर्ड पोजेस होते हैं, एंड वी ऑल नो अबाउट दैट, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेणुका के क्लासी पोजेस, लेट मी प्लीज डाइसेक्ट बिटवीन द टू, द पोजेस लाइक द रैंडम ऑल टाइम पोजेस विच लाइक आई डू, आई मेक अ हाथ से वी बना दिया, या फिर यू नो वो कोरियन हार्ट्स ऐसे करके बनाते हैं, तो ये कर लिया। सो नाउ विद बिकॉज द एआई एंड द टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस कर चुकी है, dude, people can actually AI with the help of AI can scan your fingerprint and biometric access they can actually get through that. Ooh. So they have actually mentioned it over here. If the pads of the fingers are directly exposed towards the camera and photographed from within about 1.5 meters of the lens, there's a possibility that your fingerprint ka information can be extracted.
0: वाओ, तो भाई मेरी तो फिंगरप्रिंट कब की निकल गई होगी, आयरिस भी निकल गया होगा।
2: मैं वही सोच रही हूँ, मैं अपनी डीपी देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ अंतरा व्हाट इज रॉन्ग विद यू,
0: सीरियसली। ये तो चलो शुक्र है लोगों को पता है कि इसके फिंगरप्रिंट भी ले लिए तो भी कुछ खास नहीं मिलने वाला, इसीलिए बची पड़ी
2: हूँ। तो दैट इज नॉट, बट इट्स सो स्केरी।
0: AI and all this technology, well, we are all headed towards a disaster to nahi kahenge, but
2: I was definitely. Like that, tell me again how AI was going to help us, like how?
0: वो तो हमारा बॉस बन के बैठ गया ऑलरेडी, दोस मूवीज वेयर दे शोड दैट एआई इज गोइंग टू बी आवर मास्टर एंड वी आर गोइंग टू बी द स्लेव्स, आई एम रियली ड्रेडिंग देम, सीरियसली।
2: So guys, you have to be really, really careful. Like, या तो तुम हमारे जैसे, like मेरे जैसे पूरे ही गरीब हो कि तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, क्या ही कर लोगे तुम मेरा फिंगरप्रिंट लेकर, लेकिन अगर तुम्हें टेंशन है तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: सुबह आई थी तो लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा जुकाम है, पैनाडोल खाई, कोल्ड एंड फ्लू, ये वो सब कुछ, और फिर मतलब डेढ़ घंटे पौने दो घंटे में ये बीमारी कहां से कहां पहुंच गई, देखो जरा।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडम।
0: अब तो शाम का शो मैं क्या ही कर पाऊंगी, पर चलो एनीवे देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये बहुत ही सहारा मांगता हुआ बॉस यहाँ पर एक क्रूर क्रूर एम्प्लॉय की नजरें मेरे पे पड़ रही है। तो अगली खबर भी मेरी है।
2: क्या आप सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? कैन यू फील इट ऑलरेडी, और इज इट मी हु कैन फील इट? ओनली
0: यू, बताएं तुम्हें। क्रूर क्रूर एम्प्लॉय के दिमाग में गंदे विचार आ रहे हैं, बाकी सबके दिमाग में सिंपैथी आ रही है मेरे लिए, पर ठीक है, यही फर्क है, यही है दुनिया। 27 साल का एक आदमी, उसकी हालत सोचो क्या हो रही है। पैसा है उसके पास, सब कुछ है, लेकिन कितना ज्यादा वो लोनली है, तुम ये सोचो। हाल ही में उसने एक एडवर्टाइजमेंट दी है अंतरा, शायद तुम इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहो। 27 साल का ये लड़का कह रहा है कि मैं 6,000 रुपए दूंगा महीने के, पैसे बहुत कम दे रहा है, वैसे 6,000 रुपए दूंगा महीने के फॉर रेगुलर कॉन्वर्सेशंस, जो वो लोग यहाँ पर अप्लाई करें जो मेरी लोनलीनेस से मेरे को हेल्प कर सकते हैं। काफी वेल्दी फैमिली का है, डिसेंट पोजीशन है अपने करियर में, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला कोई इंसान चाहिए उसको टू टॉक ड्यूरिंग ऑफिस कम्यूट, लंच ब्रेक्स एंड सोने से पहले। मतलब उसने बड़ी सिंपल सी बात करी है भाई, थोड़ी काम वॉइस होनी चाहिए, पोलाइट अंडरटोन होना चाहिए, कभी कोई क्लेश ना करे। उसने स्पेशली वर्ड यूज किया है, नेवर क्रिएट एनी क्लेश दैट डिस्टर्ब्स माय पीस, और साथ में कहा है जेन्युइनली कंसर्न्ड हो मेरे बारे में, मतलब मेरे हेल्थ, डाइट, मेंटल हेल्थ, वर्क लाइफ के बारे में बात करे, 6,000 रुपए महीने के। तुम्हें जाना है?
2: नहीं, definitely not. क्यों? Like क्यों? I am not the right choice. The way, मतलब मेरे लिए तो पहले ही red flag ही हो जाता है कि तुम होते कौन हो मुझे इतने rules देने वाले।
0: हाँ।
2: मैं तो वही पे off. Like don't give me rules that too soon. अच्छा तुम पैसे की बात कर रहे हो, ढंग के पैसे तो दे। तू तो ऐसे बोल रहा है कि भाई मेरे को शादी नहीं करनी है, लेकिन मुझे बाकी फंड तेरे से सारा सारा कुछ चाहिए।
0: तू सूटेबल है ही नहीं, तू तो अभी से कलेश कर रही है।
2: ना? मैं कह रही हूँ publicly accepted.
0: मतलब मुझे ना सबसे फनी बात उसकी पूरी एड में लिखा, should not do kalesh. I mean like seriously.
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore. Check it out.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: भाई कभी कभी ना ये रेस्टोरेंट वाले एकदम अच्छी चीजें लिखते हैं,
1: कभी कभी सिर्फ
2: क्रेजी दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती।
1: बस तबीयत थोड़ी नसासी है। थैंक यू फॉर योर मैसेजेस। देख लो अभी भी मुझे शाम का शो तो करना है, रात के 8 बजेंगे आज स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग।
0: सीधा खबर पे जाते हुए ये बताना चाहती हूँ कि मैं बात करने वाली हूँ एक रेस्टोरेंट के, एक इंडियन रेस्टोरेंट के मेन्यू की, वो भी विदेश में। ठीक है, बिल्कुल। आप जब ये खोलते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सारे नानों की जो है एक लिस्ट देखें, बटर नान, चीज नान, कुलचा नान, बुलेट नान। तो आउट ऑफ ऑल दीज नान देयर वाज दिस गार्लिक नान, एंड गार्लिक नान के नीचे का जो डिस्क्रिप्शन, बाकी सब में डिस्क्रिप्शन नॉर्मल लिखा हुआ है, चीज नान का लिखा हुआ है विद अ थिन लेयर ऑफ स्मूथ लाइट French cheese, this also makes a delicious starter and everything. But garlic naan mein jo likha hua tha niche, wo tha ye, that if you have any erotic activities planned for after you leave us, okay, perhaps you should resist the sensational garlic naan.
1: As if garlic is the only thing which avoids that. लुट ले गया धुरंधर के साउंड ट्रैक से। कमिंग अप नेक्स्ट। हाँ तो अंतरा क्या कह रहे थे हम?
0: कह रहे रेणुका ने इतनी इंटेलिजेंट बात की, विच ऑल्सो टेल्स मी दैट हालांकि कोई नहीं, उनका नोज रनिंग है बट द माइंड इज ऑल्सो रनिंग एंड शी इज कंप्लीटली फिट दैट वेज। हाँ
1: And she's planning to run away as well right after the show. लेकिन इसकी रनिंग को रोकने के लिए बस मेरा रनी नोज ही काफी है। और आपके एक दो मैसेजेस आ जाए इसको रिक्वेस्ट करते हुए शाम को रुकने के लिए, तो बस फिर तो सोने पे सुहागा है ना।
0: लास्ट टाइम वाला भूल गए नंबर एक,
1: वो वापस आएगा, वो वापस आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे एंड वी गोना टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ लिटिल बिट। स्टे ट्यून्ड।
3: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।
4: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
5: I love you, रसना।
4: समोसा पैटीज, फूटी, लिम्का, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: मध्य प्रदेश का सतना डिस्ट्रिक्ट, बिलीव इट और नॉट, मैं वहां गई हूँ, और वहां का सेंट्रल जेल, मैं वहां नहीं गई हूँ. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज रेणुका, दिस मस्ती मैडनेस, एंड ऑफ कोर्स अगली खबर सतना से. उफ,
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस.
2: फीलर आ रही है मुझे कि इन्होंने एक फाइनली पूरे शो में से एक तो चुराई लिया है. बताओ बताओ बालिक.
0: वेल, इट्स ऑलवेज फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट. So, भाई ऐसा है कि इन उंगलियों को इस न्यूज पर घुमाते हुए मैं बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही प्यारी सी शादी हुई है फिरोजा खातून की, जो है असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट सतना के सेंट्रल जेल में, और धर्मिंदर सिंह की, हु इज आल्सो नोन एज अभिलाष, जो है फॉर्मर लाइफ कॉन्विक्ट, जो अपना सेंटेंस सर्व कर चुके हैं इस प्रिजन फैसिलिटी में, एंड ऑफकोर्स अब वो अंगूठी पहना के और वरमालाएं, या कह लीजिए कि जो भी उनके वाउज हैं, उसको एक्सचेंज करके शादी के बंधन में और निकाह के बंधन में बंधने वाले हैं. क्या बात है, मतलब what started curious conversations over prisons, है ना, और उसके बाद में वो कन्वर्ट हो गई और रियल लाइफ स्टोरी बन गई, राइट आउट ऑफ बॉलीवुड स्क्रिप्ट. अब आप सोचिए, फिरोजा जो वहां की जेलर थी, शी वॉज टोटली इन लव विद दिस कॉन्विक्ट, और फिर इनकी शादी हुई हाल ही में, और मतलब अब वो खुशी खुशी रहेंगे जेल के अंदर, तो नहीं शायद जेल के बाहर ही रहेंगे, बट फॉर एन अमेजिंग थिंग, राइट.
2: कैसे हो जाता है ये सब, मतलब इट्स सो वियर्ड एंड यूनिक एट द सेम टाइम. हालांकि आई एम अमेज्ड आल्सो एट द फैक्ट दैट अब मुझे ना रेणुका ये सारी बातें ना उतनी वियर्ड नहीं लगती जितनी पहले लगती थी. अब मुझे ऐसा लगता है ये तो हमारी लिस्ट में बहुत बहुत नीचे जाता है ये.
0: एक्चुअली वेरी ट्रू, क्योंकि ये तो चलो ठीक है, तो प्यार की बात है, हमने तो क्या क्या नहीं देखा. अब तो हमने क्या क्या नहीं देखा, बट इमेजिन इनका प्यार शुरू कैसे हुआ होगा. अंतरा है वो जेलर जाके उसको छितर मारे, ये करे वो करे, फिर धीरे धीरे, मतलब सोचो नाइट ड्यूटी हो रही है जेलर की और वो कॉन्विक्ट सामने बैठा हुआ है, और फिर उनके बीच में प्यार हो रहा है, मतलब पिक्चर टाइप का है यार, दिस इज लाइक रियली.
2: आई नो,
0: या सो आई डोंट ब्लेम देम व्हेन देयर लव हैज बिकम एक्चुअली द टॉक ऑफ द टाउन. लेकिन ये बंदा एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अंदर गया था, कैन यू बिलीव इट. सो अब एंड मैं देख रही हूँ आजकल नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी आई है,

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: आज का सवाल ये होना चाहिए, विल आई गो और नॉट?
1: गो होम, गो ऑन द नेक्स्ट शो, और कहाँ?
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस।
1: अच्छा बाकी सब छोड़िए, मैं तो जनता से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर एक जॉक जिसका शो है शाम को वो बीमार है जैसा कि वो दिख रहा है इस टाइम, तो क्या दूसरे जॉक को उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? बस मेरा छोटा सा सवाल है और मेरा कुछ है ही नहीं सवाल, तो आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? 9151896 3, है ना अंतरा?
0: हाँ, जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, वो जॉक जिसकी ये बात कर रही हो, जो जिसके लिए सामने रख रही हो, वो पिछले दो शो से जो है किसी ना किसी कारणवश जो है शाम वाले शो पे रोक लिया जा रहा है। फाइनली आज जो है जैसे ही मैं आई तो उसके बाद से जो है आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, जॉक के वीक पॉइंट्स को जगाया जा रहा है, खंगाला जा रहा है, झंझोड़ा जा रहा है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, कहाँ गई तुम्हारी अंतरा आत्मा, चीख के तुमको नहीं बोल रही है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए?
1: नहीं, इसमें कहीं भी कोई ऐसा तंज नहीं है जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ आपके पास कोई वैलिड रीजन है। सिर्फ एक बीमार व्यक्ति दिख रहा है जिसके आगे काम ही काम है, और एक दूसरा बहुत ही अकम्प्लिश्ड इंसान दिख रहा है जो वो काम कर सकता है लेकिन वो करना नहीं चाहता। तो आप बताओ एक अच्छे,
0: ये भूल चुकी है, कोई नहीं, पीपल नो दैट लास्ट फ्राइडे क्या हुआ था। ओके, मतलब ये कितना रोई थी कि इनके चाहिए सजना को मैंने तो घर ही भेज दिया था कि नहीं अब वो सीधा घर ही जाएगा।
1: बात हो
0: आज
1: रही है,
0: पता नहीं अगर तुम्हें रुक गई तो फिर क्या ही होगा।
1: बात हो रही है आज शाम के मस्ती टॉप चार्ट्स की। अब आपको दिख रहा है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मेरी हालत कैसी हो रही है कि नलका बह रहा है मेरे नाक से, लेकिन अगर मैं एक फेलो जॉक से मदद मांग रही हूँ कि सुनो आज तुम मेरा वो शो कर दो, तो इसमें क्या गलत है? लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बताइए जरा, और फिर उसके बाद शाम को देखते हैं क्या होता है। अभी मैं कोशिश जारी रहेगी, हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ द डे। हम मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो मंडे को मिलते हैं। टेक केयर।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
6: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
5: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
6: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा on Radio Musti 24/7 Live.
5: For show timings, check out the Radio Musti 24/7 Live app. RJ Mugdha ke saath, gossip bhi, masti bhi, sarcasm bhi. Sab kuch sirf Musti Hangout.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है
3: मुझे चांद पे ले चलो
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
3: रात अकेले
4: They are fresh.
5: They are.

0: चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20, पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009.
1: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: फिल्मों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूँ एक और गुलदस्ता, एक और साल का बेहतरीन सफर यादों का कारवां के जरिए। तुझे आज यादों का कारवां गुजरेगा 1976 के साल से, 1976 के ईयर से। और आज के शो की हम शुरुआत करेंगे सिंगापुर उस फिल्म से जिसने 1976 के साल में ही नहीं बल्कि सालों तक करोड़ों सिने दर्शकों के दिलों पर राज किया। जी हाँ, शो की शुरुआत कर रहे हैं हम द लेजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब की मल्टी स्टारर फिल्म कभी कभी से। वही कभी कभी जिसका गाना था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए। वैसे सुपर डुपर हिट फिल्म की स्टार कास्ट बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन दस्तूर है तो बता ही देते हैं। देखिए, इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन साहब, शशि कपूर और ऋषि कपूर के साथ राखी, वहीदा रहमान, नीतू सिंह, सिमी गरेवाल और नसीम, ये बड़े बड़े रोल्स में थे। और इनके अलावा परीक्षित साहनी को भी आप इस फिल्म में देख सकते हैं। अब भाई, किसी फिल्म में इतने सारे मंझे हुए कलाकार हो तो मजा लेके आपकी नजर इधर से उधर हो जाए, फिल्म के पर्दे से नजर आप हटा ही नहीं सकते। वैसे ये जो मूवी थी वो कई मायनों में बाकी की फिल्मों से हटकर बनी थी। इससे पहले तक एंग्री यंग मैन की पहचान बना चुके थे अमिताभ बच्चन साहब, लेकिन जब लोगों ने उन्हें कभी कभी में देखा तो वो चौंक गए। बस तभी से बच्चन साहब को रोमांटिक एक्टर के तौर पर भी देखा जाने लगा। वैसे इस फिल्म के कई और किस्से भी ऐसे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। अब आप बताइए कि क्या आप जानते हैं कि फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब के फादर मदर भी ऑन स्क्रीन आए थे। सच बोल रहा हूँ, हरिवंश राय बच्चन साहब और तेजी बच्चन हालांकि एक छोटी सी भूमिका में थे लेकिन दिखाई दिए थे, लेकिन वो इसमें अमिताभ बच्चन साहब के नहीं बल्कि राखी के मम्मी पापा के किरदार में है। अगर आपने गौर नहीं किया हो तो इस बार जब फिल्म देखें तो जरूर गौर कीजिएगा। और सिंगापुर के अलावा एक और खास बात थी, कश्मीर में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और ज्यादातर एक्टर एक्ट्रेसेस की पूरी फैमिली को इनवाइट किया गया था कश्मीर में छुट्टियां बिताने के लिए, शूटिंग देखने के लिए, जैसे अमिताभ बच्चन साहब के माता पिता को। और एक बात तो बताना मैं भूल ही गया आपको, यही वो कभी कभी फिल्म थी जिसके बाद से कभी कभी नहीं बल्कि रोज रोज मिलना जुलना शुरू हो गया था नीतू सिंह और ऋषि कपूर साहब का, मतलब उनका अफेयर यहीं से शुरू हुआ था जो आगे चलकर शादी के बंधन में बंध गया। वेल, फिल्म तो थी ही सुपरहिट लेकिन इसके गाने भी कम हिट नहीं थे। और इसमें एक खास रोल था साहिर लुधियानवी साहब की कलम से निकले गीतों का। म्यूजिक डायरेक्टर खयाम ने कमाल की धुनें रची जादू करती हुई। और टाइटल ट्रैक कभी कभी तो आज भी कहीं सुनाई दे जाता है तो कदम रुक जाते हैं, पूरा गाना सुनकर ही आगे बढ़ने का दिल करता है। और इसके अलावा, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, ये बहुत ही कमाल का गाना था जो मुझे बहुत पसंद है। वैसे कुल मिलाकर इस फिल्म में 10 गाने, मुकेश, लता और किशोर कुमार साहब ने ज्यादातर गाने गाए हैं ये, और सभी के सभी अल्टीमेट हैं। जितनी इनकी तारीफ करें उतना कम है। तो एक काम करते हैं, कंप्यूटर जी, आपसे भी ना रह जाएगा, एक गाना तो आप ना सुना पाएंगे, कम से कम 2 गाने सुना दीजिए। शुरुआत कर दीजिए मनमोहक मस्त रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर सिंगापुर। आप हैं समर के साथ, रहिएगा मेरे साथ क्योंकि आज ये कारवां गुजर रहा है 1976 के साल से। 22 साल से तो जुड़ी बहुत सारी यादें आपकी भी होंगी, तो ताजा कीजिए ना, आइए हमारे फेसबुक पेज पर, इंतजार कर रहा हूं मैं।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

वेलकम बैक सिंगापुर, मैं हूं समर। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूं यादों का कारवां। और ये यादों का कारवां आज कहां से गुजर रहा है? जी 1976 के साल से। गीता जी आप तो पहले उस साल हुई थी, नहीं? गीता जी, आरुषि, आप में से बहुत सारे लोग इस साल पैदा हुए हैं। और पीयूषी, तुम्हारी शायद मम्मी इस साल पैदा हुई थी, इस साल या इससे एक साल पहले, मतलब यहीं कहीं पैदा हुई थी ना। तो चलिए आप भी अपनी यादें हमसे यूं ही ताजा करते रहिएगा। लेकिन फिलहाल तो मैं एक और फिल्म का जिक्र कर देता हूँ जो इसी साल आई थी। फिल्म थी 1976 में ही रिलीज हुई, काली चरण। सुभाष घई साहब की ये डेब्यू फिल्म थी एज ए डायरेक्टर। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी ये पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी। और सिर्फ घई साहब ही नहीं, बल्कि इस काली चरण फिल्म ने तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब और रीना रॉय को भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की पसंद बना दिया था। वैसे शत्रु साहब को ये फिल्म किस्मत से मिली थी। दरअसल जब घई साहब काली चरण प्रोड्यूस करने के लिए स्टोरी को एनएनसीपी साहब को सुना रहे थे, उनके पास लेकर गए अपनी कहानी, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना को लीड रोल में रखकर ही फिल्म बनाने की शर्त रख डाली। पर पता किया तो खन्ना साहब ऑलरेडी 2-3 साल के लिए बुक थे। काफी सोच विचार करके सिप्पी साहब और घई साहब इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि भैया देखो, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा को एज ए लीड रोल कास्ट कर लेते हैं। और सिन्हा साहब भी इस मौके को शानदार एक्टिंग की बदौलत बनाने में कामयाब रहे। ये फिल्म उनकी पहली सक्सेसफुल फिल्म रही। इंस्पेक्टर प्रभाकर का उनका किरदार बहुत पसंद किया गया। और हाँ, डायलॉग तो और भी लाजवाब थे। शत्रु साहब के एक डायलॉग ने तो लोगों का दिल जीत लिया था। जब तक तू नाम नहीं बताएगा मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, कमाल का था ये डायलॉग। और इस फिल्म के बाद तो कई लोग शत्रुघ्न सिन्हा को काली चरण कहकर ही बुलाने लगे थे, क्योंकि इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा साहब का डबल रोल था, इंस्पेक्टर प्रभाकर और काली चरण, दोनों का किरदार उन्होंने निभाया था। डायलॉग एक और हिट रहा, वो था विलेन का, अजीत साहब का, सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है, वो कमाल का डायलॉग। ये कुछ डायलॉग्स थे जो बॉलीवुड में कभी नहीं भुलाए जा सकते। वैसे इस फिल्म में विलेंस का भी जबरदस्त बोलबाला था। अजीत के साथ डैनी, प्रेमनाथ, शेट्टी, ये वो कुछ नाम है जो मैं आपको गिना सकता हूँ, जिन्हें आप शायद पहचानते हो। पूरी एक्शन थ्रिलर थी ये फिल्म। खैर बात करते हैं काली चरण के गानों की, हमें तो गाने सुनाना है ना आपको। तो सिर्फ 4 ही गाने इस फिल्म में, लेकिन चारों जबरदस्त धमाल मचाने वाले लाजवाब गाने। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक और रविंद्र जैन और इंद्रजीत के लिरिक्स इन गानों में 4 चांद लगा रहे हैं। बाकी का काम किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता जी और आशा भोसले की सुरमई आवाज ने कर दिया। तो इन 4 में से चुनकर सुनाते हैं आपको ये गाने। आप सुनते रहिएगा यादों का कारवां समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। वेलकम बैक, समर है मेरा नाम, रेडियो 24/7 लाइव पर फ्लैशबैक में ले जाकर आपकी यादें ताजा करना है मेरा काम, और यादों का कारवां है मेरे शो का नाम। तो यादों का कारवां आज गुजर रहा है सिंगापुर 1976 के साल से। रेडियो 24/7 लाइव की ये महफिल आपको कैसी लग रही है और आप भी अपनी यादें हमसे ताजा कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यादें ताजा कीजिए, बताइए कि 1976 में आप कहां थे, क्या कर रहे थे वगैरह वगैरह। देखते हैं कि आपने ये फिल्म कहां देखी थी, कब देखी थी, देखी भी थी कि नहीं, जिसका जिक्र मैं अब करने वाला हूं। ये फिल्म थी एक्शन जॉनर की फिल्म, नाम था इसका 10 नंबरी। जी हाँ, मनोज कुमार साहब वाली 10 नंबरी। साथ में थी उनके हेमा मालिनी। वैसे हेमा जी के साथ मनोज जी की भी और कई फिल्में आईं, जैसे सन्यासी, क्रांति वगैरह वगैरह, और सभी अच्छी खासी चली भी। पर जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस फिल्म को, यानी 10 नंबरी को मिला ना, उतना तो शायद ही किसी फिल्म को मिला। हाँ, क्रांति को मिला था, लेकिन उसके लिए पूरा क्रेडिट इन दोनों को नहीं दिया जा सकता, उसमें बहुत सारे कलाकार थे। वेल, तो कहते हैं ना कि एक तो होता है हिट और उस पे होता है सुपरहिट, और उससे भी ऊपर होता है ब्लॉकबस्टर हिट। तो बस 10 नंबरी इस कैटेगरी में आती है। यू वोंट बिलीव, तब इसने इंडियन रुपीज में 4 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। पर दोस्तों, दुख की बात यह है कि इस बेहतरीन फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर मदन मोहला कुछ समय पहले ही 82 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से 82 साल की उम्र में इस शख्सियत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। खैर, 10 नंबरी जैसी कई खूबसूरत सी मूवीज के जरिए वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कमाल के डायरेक्टर रहे मदन साहब। दोस्तों, आसान नहीं होता बैक टू बैक 4 सिल्वर जुबली फिल्में देना। आसरा, शराफत, राजा जानी और फिर 10 नंबरी, ये उनकी फिल्में थी। बहरहाल, अब जो नहीं जानता वो जरूर पूछेगा कि इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसे दर्शकों ने इतना ज्यादा पसंद किया। दरअसल, इस फिल्म में मनोज कुमार का रोल 10 नंबरी यानी कि आदतन अपराधी का है, जिसे हालात ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। छोटी उम्र में छोटी मोटी चोरियां करता हुआ जब ये किरदार बड़ा होता है तो इलाके का खतरनाक डॉन बन जाता है। इस बीच अर्जुन यानी कि मनोज कुमार साहब को इश्क मोहब्बत हो जाता है रोज मैरी से, जिसके किरदार में है हेमा मालिनी जी। तो कुल मिलाकर शुरू से लेकर आखिर तक फिल्म पूरा पैसा वसूल है। नहीं देखी तो अब भी देख सकते हैं आप, मौका मिले तो जरूर देखिएगा। फिलहाल तो इसके गानों की बात कर लेते हैं। लिरिसिस्ट हैं इस फिल्म के मजरू सुल्तानपुरी साहब, और उनके लिखे बोलों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जादुई जोड़ी ने। कुल मिलाकर 6 गाने इस फिल्म में, लेकिन अभी आपको टाइटल ट्रैक सुनवा देते हैं जो सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। ये दुनिया 1 नंबरी, तुम्हें 10 नंबरी, आइए सुनते हैं।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: लीजिए एक बार फिर से आपका स्वागत है, मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं आज 1976 के साल से इस कारवा को गुजार रहा हूँ जिसका नाम है यादों का कारवा। तो सिंगापुर 70s के दौर में अमिताभ बच्चन साहब, राजेश खन्ना, शशि कपूर, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्टर्स की धाक रही। जिस भी मूवी को उठा लीजिए, जो भी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा हिट रही, उनमें इन्हीं गिने चुने एक्टर्स के नाम और उनकी तस्वीर आपको दिखाई देगी। पर एक एक्टर ऐसा भी था जो इंडस्ट्री में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाता जा रहा था। गैस कर सकते हैं वो कौन सा एक्टर था? चलिए मैं बता देता हूँ, वो नौजवान एक्टर थे ऋषि कपूर साहब। जी हाँ, ठीक 1970 में ऋषि कपूर ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर बड़े पर्दे पर एंट्री की थी और राज साहब के बचपन का रोल, राजू का रोल उन्होंने किया था मेरा नाम जोकर में। बेहतरीन अदाकारी का सिलसिला जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बॉबी, फिर रफू चक्कर और फिर कभी कभी के बाद धमाकेदार फिल्मों की इस फेरिस्त में अगली फिल्म आई लैला मजनू, बिल्कुल अलग जॉनर की फिल्म, दो प्रेमियों की सच्ची कहानी पर। ऐसा कहते हैं कि सऊदी अरब में ऐसे दो प्रेमी हुए थे, लैला और मजनू। लैला एक्चुअली, लैला का नाम तो लैला था लेकिन मजनू का नाम मजनू नहीं था, मजनू का नाम था खैस, खैस होता उनका नाम, लेकिन क्योंकि वो लैला के इतने बड़े दीवाने हो जाते हैं तो वो मजनू कहलाए। मजनू बेसिकली अरेबिक में कहते हैं दीवाने को, पागल को। तो लैला के दीवाने थे मजनू साहब। तो लैला मजनू जो एक कहानी पर्दे पर दिखाई गई तो ये लोगों को बहुत पसंद आई और इसमें ऋषि कपूर तो बने थे मजनू, लेकिन क्या आप जानते हैं लैला कौन थी? जी, एनी गेसेस? अगर आप कह रहे हैं रंजीता कौर तो आप बिल्कुल सही हैं। रंजीता की ये डेब्यू फिल्म थी, लिहाजा इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो चुके ऋषिदा के सामने वो कहीं से भी कम नजर नहीं आई। ऋषिदा मैं बोल रहा हूँ, ऋषि कपूर साहब को। हाँ, अक्सर हम ऋषिदा बोलते हैं, ऋषिकेश मुखर्जी साहब को। अब भाई ऋषिदा बड़े हो गए तो, और हम उनकी सेहत की बहुत कामना करते हैं क्योंकि वो अभी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हैं, अमेरिका गए हुए। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से ठीक होकर वापस आए। तो यहाँ मैं ऋषिदा उन्हें कह रहा हूँ। ऋषिदा के साथ रंजीता कौर थी और दोनों ने कमाल की एक्टिंग की। बाकी के कैरेक्टर्स जैसे डेनी डेंजोंगपा, अरुणा ईरानी, असरानी और रजा मुराद साहब भी कमाल के थे, लाजवाब थे। वैसे इस फिल्म के बनने के बाद न जाने कितनी ही लैंग्वेजेस में इसी कॉन्सेप्ट, लैला मजनू के कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी फिल्में बनी और दौर अभी भी बन रही है। इसका एक रीमेक तो मुझे भी याद है, हरमेश मल्होत्रा साहब ने बनाया था लैला मजनू के नाम से ही, और ये इसमें लैला थी श्रीदेवी और मजनू बने थे अनिल कपूर साहब। तो ये फिल्म तो उतनी नहीं चली थी जितनी ये लैला मजनू चली थी, 1976 वाली लैला मजनू। इसके गाने बड़े कमाल के थे, एक से बढ़कर एक गाने थे, और इसमें क्योंकि कमाल का काम किया था ऋषि कपूर साहब ने तो इसलिए भी ये फिल्म बहुत ज्यादा याद की जाती है। वो गाना, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। आहा, क्या बात थी। लता जी की आवाज का जादू आज तक कानों में मिठास खोले हुए है। सिर्फ यही नहीं, बाकी के गाने भी, जैसे इस रेशमी पाजेब की झनकार, रस्ते रस्ते, और तेरे दर पर आया हूँ कुछ लेकर जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, कमाल की कवाली थी। ये सभी कमाल के गाने लिखे साहिर लुधियानवी साहब ने और म्यूजिक कंपोज किया था मदन मोहन साहब ने। तो चलिए फिलहाल तो मैं अपने कंप्यूटर जी से दरख्वास्त करूंगा कि एक गाने से तो होगा नहीं है, दो गाने तो सुनवाइए कम से कम। और आप लोग सुनते रहिए यादों का कारवां, अपनी यादें ताजा करते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव के फेसबुक पेज पर आकर। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं हूँ समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर इन नगमों के बाद। स्टे कनेक्टेड।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर, नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: वेलकम बैक सिंगापुर, समर आपका यहाँ पर इंतजार कर रहा है। यह है रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। और आज हम अपने कारवां के जरिए 1976 की सैर कर रहे हैं। यादों का कारवां है हमारे शो का नाम। मैंने एक फिल्म का जिक्र किया, लैला मजनू उसका नाम था। उसके बाद कई फिल्में लैला मजनू के कॉन्सेप्ट पर बनी। ऐसी एक फिल्म आई थी नागिन इसी साल, हालांकि एक नागिन पहले भी आ चुकी थी, वैजंती माला उसमें हीरोइन थी, लेकिन ये नागिन तो कमाल की नागिन थी। बेहतरीन अदाकारा रीना रॉय की ये कमाल की फिल्म थी, जिसे एक मायने में जो इस समय नागिन का कॉन्सेप्ट चल रहा है उस कॉन्सेप्ट की पहली फिल्म कहा जा सकता है। भाई अभी तक नागिन के नाम से जो भी फिल्म या सीरियल्स बन रहे हैं उनमें लीड रोल यानी कि नागिन का एक ही मकसद रहता है, प्रेमी नाग की हत्या का बदला लेना। सही कह रहा हूं ना मैं? तो जनाब बात हो रही है रीना रॉय वाली नागिन की। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस हैं रीना रॉय, वही इसमें नेगेटिव किरदार में है, जो अमूमन बॉलीवुड की फिल्मों में देखा नहीं जाता है। पूरी मूवी में सिर्फ बदला बदला और बदला लेना ही दिखाया गया है। प्रेमी नाग का किरदार निभाया जितेंद्र साहब ने, जिनका ज्यादा रोल नहीं है, मारे जाते हैं वो इसीलिए तो नागिन बदला लेती है। वहीं सुनील दत्त साहब का रोल दमदार है। नागिन जहां बदला लेते हुए एक के बाद एक छह दोस्तों को मार डालती है, वहीं आखिर में सातवां दोस्त यानी कि सुनील दत्त साहब नागिन को ही मार डालते हैं और ऐसे फिल्म खत्म हो जाती है, दी एंड हो जाता है। वैसे रीना रॉय की जगह नागिन के रोल के लिए डायरेक्टर ने पहले सायरा बानो को अप्रोच किया, फिर मुमताज को किया, फिर रेखा को। तीनों ने ही मना कर दिया, बोली ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है भैया, ये शेड हम नहीं करेंगे। लिहाजा लॉटरी लग गई महज 19 साल की रीना रॉय की, और नागिन करने के बाद रातों रात वो पॉपुलर हो गई। तो देखिए जनाब, यही तो लेसन है इस कहानी का कि जब मौका मिले उसे भुना लो, नहीं तो भैया देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, हो जाती है देर, फिर पछताए क्या हो जब नागिन हो जाए हिट, भले ही वो हो नेगेटिव कैरेक्टर में फिट, बस वो होनी चाहिए नेगेटिव कैरेक्टर में भी फिट। तो यही हुआ, फिल्म हिट हो गई। तो चलिए फिलहाल इस फिल्म के गानों की भी बात कर लेते हैं। इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं जिन्हें मोहम्मद रफी साहब, महेंद्र कपूर और लता दीदी की लाजवाब आवाजें मिली हैं। तो ये आप देर किस बात की, वर्मा मलिक के लिखे बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के खूबसूरत म्यूजिक से सजे ये गाने आपको सुनवा देते हैं रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। नागिन आपने देखी है क्या? कब देखी थी? 1976 में आई थी ये फिल्म, क्या आपने उसी साल देखी थी? बताइए बताइए, इन यादों को ताजा कीजिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव के फेसबुक पेज पर आकर। स्टे कनेक्टेड।
3: अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
4: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेकूफी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
3: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
5: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए?
6: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं। मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
3: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
7: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
3: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसे चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर ना देख सके।
3: That's such.
0: हाँ, चलो। चलिए।
4: हालत कुछ अपनी भी ऐसी है मेरी जान, लेकिन कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं। ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। उफ़, तुम्हारी आंखें, आज तुम्हारी आंखें प्यार के शरारे बरसा रही हैं, और इनकी ताब लाने के लिए मुझे सहारा चाहिए, चाम का। अगर आपकी इजाजत हो तो
5: आज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन जल्दी।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ और आज समर आपको लिए चला है 1976 के बेहतरीन साल से। ये वो दौर था सिंगापुर जब बहुत सारे बड़े डायरेक्टर्स हमें अलविदा कह चुके थे। मैं बात कर रहा हूँ गुरुदत्त साहब की, मैं बात कर रहा हूँ बिमल रॉय की, मैं बात कर रहा हूँ आसिफ साहब की, मैं बात कर रहा हूँ महबूब खान साहब की। इनकी जो बेहतरीन फिल्में और जिस तरह की ये फिल्म बनाया करते थे, जैसी कहानियां दिखाया करते थे, वो अब नहीं थी। ये नया दौर था और इसमें मसाला फिल्में ज्यादा चल रही थी और जब मसाला फिल्मों की बात आती है तो दो तीन डायरेक्टर्स का नाम उस वक्त बहुत चर्चा में था। एक मनमोहन देसाई, दूसरे मोहन कुमार और तीसरे प्रकाश मेहरा। तो ये जो अगली फिल्म है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ वो प्रकाश मेहरा साहब ने डायरेक्ट की है, उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से निकली है फिल्म। फिल्म का नाम था हेरा फेरी। हालांकि बाद में जो हेरा फेरी आई उसके सीक्वल भी बने, लेकिन ये हेरा फेरी 1976 में हो गई थी। प्रकाश मेहरा की एक और गुड डोज ऑफ कॉमेडी रोमांस एंड ड्रामा थी ये, और इसमें अजय और विजय थे, नहीं बॉबी और सनी देओल नहीं, अजय और विजय इस फिल्म के दो कैरेक्टर्स थे जो अमिताभ बच्चन साहब ने और विनोद खन्ना ने निभाए थे। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि विजय कौन थे। विजय ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन थे और अजय विनोद खन्ना। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने कुल मिलाकर साथ साथ 6 फिल्में की, उनमें से एक सक्सेसफुल फिल्म ये भी थी और दोनों ही उस वक्त टॉप पोजिशन के लिए एक तरह से कंटेंडर थे। मैं 1976 की बात कर रहा हूँ। उस दौर को अगर आज के दौर से कंपेयर करें तो आप ये मान लीजिए कि सलमान खान और शाहरुख खान की कोई फिल्म है, दोनों चाहते हैं कि वो नंबर वन बने और उनके जो दर्शक हैं, उनके जो फैंस हैं, वो भी इन दोनों की फिल्मों के दीवाने थे। तो इसीलिए फिल्में हिट होना लाजमी था और हुई भी। हेरा फेरी का मतलब होता है फाउल प्ले, मतलब सही मायने में अगर मैं कहूं तो धोखाधड़ी देना, इधर की चीज उधर करना। तो ये कुछ कमाल की फिल्म थी, इसीलिए इसमें कॉमेडी बहुत थी और बड़ी अच्छी कॉमेडी की दोनों ही एक्टर्स ने। 1976 की हेरा फेरी में, जिसे डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा ने, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के अलावा उनकी हीरोइन थी सायरा बानो, जो अमिताभ बच्चन साहब की हीरोइन थी। और विनोद खन्ना की हीरोइन कौन थी मालूम है आपको? सुलक्षणा पंडित। जतिन ललित को जानते हैं आप? जतिन पंडित, ललित पंडित, ये उन्हीं की बहनें हैं, विजेता पंडित और सुलक्षणा पंडित। तो उनकी जो बड़ी बहन थी सुलक्षणा पंडित, वो इस फिल्म में हीरोइन थी। श्रीराम लागू थे इसमें और उनके अलावा असरानी भी थे, जिनका बड़ा कमाल का काम था। फिल्म का म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और गाने लिखे थे अंजान साहब ने, अंजान समीर अंजान के पिताजी। और इस पूरी टीम के कमाल के एफर्ट्स का अंजाम ये हुआ कि फिल्म सुपरहिट हो गई। तो मुझे तो इस फिल्म का टाइटल ट्रैक बहुत पसंद है। कंप्यूटर जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये गाना प्ले कर दें तो मजा आ जाए। वक्त की हीरा फेरी है, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर साहब की आवाज में। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हीरा फेरी देखी आपने? ये वाली कहाँ देखी, कैसे देखी, कब देखी, कौन साथ में था, कौन सी यादें हैं जो इस हेरा फेरी से जुड़ी हुई हैं, हमें जरूर बता सकते हैं आप रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के हमारे फेसबुक पेज पर आकर। मैं इंतजार करूंगा। मेरा नाम है समर, लौटूंगा एक और फिल्म का जिक्र लेकर बस इन नगमों के बाद। स्टे कनेक्टेड।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। यह सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गोर। मैं हूं आपके साथ समर लेजेंड्स वाला आजकल यादों का कारवां के जरिए आपसे मुखातिब हूं। और आज का जो हमारा यादों का कारवां है वो गुजर रहा है सिंगापुर 1976 के साल से। बड़ा कमाल का ये साल था, बड़ी मजेदार फिल्में आई और उनके मजेदार और बेहतरीन नगमे लेकर मैं यहाँ हाजिर हूँ। कुछ कहानियां इन फिल्मों की आपको सुना रहा हूँ, कुछ कहानियां जो शायद आपने ना सुनी हो और कुछ जो आप भी जानते हो। लेकिन कोई बात नहीं, जब यूं मिल बैठेंगे तो बहुत सारी यादें भी ताजा हो जाएंगी। क्या कहते हैं आप, अपनी यादें ताजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर? हाँ, वेरी गुड। लिखते रहिए और बताते रहिए हमें कि 1976 में आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कौन कौन सी फिल्में आपने देखी। अगली फिल्म का जिक्र करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था रामायण बनाने वाले रामानंद सागर साहब ने। जी, ये फिल्म थी चरस, एक जबरदस्त हिट फिल्म थी उस साल की। फिल्म की स्टार कास्ट में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी उनकी हीरोइन, अजीत विलेन, अरुणा ईरानी धर्मेंद्र की सिस्टर बनी है, अमजद खान असरानी, सुजीत कुमार ये है, केशव मुखर्जी और टॉम ऑल्टर इस फिल्म के मुख्य पात्र थे। और इस फिल्म से पहले रामानंद सागर धर्मेंद्र साहब को लेकर आंखें मना चुके थे 1968 में, एक बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट। तो ये फिल्म भी इसी तरह की बड़ी फिल्म थी जिसकी शूटिंग इंडिया के बाहर हुई थी, रोम में और माल्टा में। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत ही युगांडा से होती है। बेसिकली वो युगांडा इंडिया में पिक्चराइज किया गया था। युगांडा में सिविल वॉर हो रहा है, बहुत ही अनरेस्ट है वहां पर, और वहां रहते हैं धर्मेंद्र और उनकी फैमिली। अचानक उनकी फैमिली को अटैक किया जाता है, उनके घर को आग लगा दी जाती है। धर्मेंद्र उस आग में से अपनी बहन को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो निकल कर आते हैं तो वो उनकी बहन नहीं होती है, वो होती है उस घर की नौकरानी। वो सारा किस्सा सुनाती है कि दीदी ने मुझे कहा कि मांग लो, तुम क्या मांगना चाहती हो मुझसे? तो मैंने कहा जो आपने कपड़े पहने मुझे ये दे दीजिए। तो मैंने उनसे ये कपड़े मांग लिए और दीदी ने मुझे ये दे दी और मैंने पहन लिए। अपनी बेटी के चले जाने के गम को धर्मेंद्र के पिताजी सह नहीं पाते और दम तोड़ देते हैं। धर्मेंद्र को अपनी बहन की बॉडी नहीं मिलती और यहां से उनके दिमाग में एक संदेह पैदा होता है। लेकिन क्योंकि युगांडा में सिविल वॉर छिड़ गया है इसलिए वो इंडिया चले आते हैं। इंडिया में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन यहाँ कर उन्हें पता लगता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी के केयर टेकर थे अजीत साहब, कालीचरण नाम है उनका इस फिल्म में, वो बड़ी घालमेल कर रहे हैं साहब। वो बहुत सारी प्रॉपर्टी को तो बेच चुके हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी से इल्लीगल धंधे शुरू कर दिए हैं उन्होंने। अब सूरज साहब को मरवाने की कोशिश करते हैं वो। सूरज कौन? अरे अपने धर्मपाजी का नाम सूरज है इस फिल्म में। तो ऐसे ये फिल्म चलती है, बड़ी अच्छी सी कहानी है। वहां से बचते हुए वो हेमा मालिनी जी की कार में छुप जाते हैं। हेमा मालिनी को भी कालीचरण यानी अजीत साहब ने सताया हुआ है, परेशान किया हुआ है, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। एक मर्डर का चार्ज उन पर लगाया हुआ है और ये धमकी दे रखी है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हें सजा करवा देंगे, इस मर्डर के केस में फंसवा देंगे। तो कुल मिलाकर वो भी स्मगलिंग करना शुरू कर देती हैं कालीचरण के लिए। लेकिन धर्मबाजी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाते हैं और वो उनके साथ कालीचरण की गैंग का बैंड बजा देते हैं। यही है पूरी फिल्म। फिल्म को लिखा है वेदराई साहब और रामानंद सागर साहब ने। फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गाने लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। और लिखे ही नहीं है, एक गाना गाया भी है कि आजा तेरी याद आई ओ बालम हर जाई। ये गाना जब शुरू होता है तो वो आनंद बख्शी साहब की आवाज में शुरू होता है। कमाल के लिरिक राइटर तो थे ही वो, साथ में उन्होंने कमाल के कई गाने भी गाए, एक ही नहीं कई गाने गाए। अच्छा, इसके अलावा इस फिल्म का एक और गाना मुझे बड़ा पसंद है, कल की हंसी मुलाकात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। फिल्म में वैसे तो कुल 6 गाने हैं लेकिन ये 2 गाने मुझे बहुत पसंद है। तो कंप्यूटर जी, आपको क्या पसंद है? आपको भी वही पसंद है ना जो मुझे पसंद है? तो सुनवाइए सिंगापुर को भी पसंद आएंगे गाने। रेडियो मुझे 24/7 लाइव पर सिंगापुर बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है समर, लौटूंगा एक और फिल्म का जिक्र लेकर यहीं पर। स्टे कनेक्टेड।
1: नाइट।
2: हां, गुड नाइट।
1: हां, गुड नाइट।
2: अच्छा, गुड नाइट।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

यादों का कारवां विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवां में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से मैं समर कर रहा हूं आपका स्वागत। 1976 की इस साल की चर्चा चल रही है आज यादों का कारवां में। तो 1976 में आप कहां थे? पैदा नहीं हुए थे लेकिन मम्मी से पूछेगा, पापा से जानिएगा कि वो कहां थे, क्या उन्होंने ये अगली फिल्म देखी थी जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं यादों का कारवां में। ये फिल्म है फकीरा। एनएनसीपी साहब ने अपनी एक टीम बनाई और एक फिल्म प्रोड्यूस की चोर मचाए शोर 1974 में, और ये फिल्म हिट हो गई। तो इसी टीम को उन्होंने दोहराया 1976 की फकीरा में। फकीरा मॉडर्न डे रॉबिनहुड टाइप की कहानी है, जिसमें इसमें भी एक्चुअली अजय और विजय दो कैरेक्टर हैं, लेकिन यहाँ विजय जो है वो फकीरा है यानी शशि कपूर, और अजय जो है वो उनके भाई है जो डैनी डेंजोंगपा बने इस फिल्म में। बचपन में दोनों बिछड़ जाते हैं, उन दिनों की कहानी में ये एक रिवाज था। तो फिल्म की शुरुआत में वो बिछड़ जाएंगे और एंड में आकर मिल जाएंगे, यही कहानी हुआ करती थी। अच्छा, ये जो अजय विजय हैं, ये जब बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के राइवल्स बन जाते हैं। दोनों ही क्रिमिनल हैं, लेकिन फकीरा अमीरों को लूटते हैं, गरीबों में बांट देते हैं, आज के रॉबिनहुड हैं वो, और इसीलिए उन्हें फकीरा कहकर लोग बुलाते हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया था सीपी दीक्षित साहब ने, और फकीरा की हीरोइन के बारे में तो बता दूं मैं आपको, फकीरा की हीरोइन है शबाना आजमी, जो एक पुलिस वाली बनी है और वो चुपके से एक अंडरकवर के तौर पर फकीरा की गैंग में शामिल हो जाती है। फकीरा की गैंग में कौन है? फकीरा की गैंग में है असरानी पोपट और अरुणाई रानी, जो मन ही मन शशि कपूर साहब को चाहने लगती है, लेकिन शशि कपूर साहब को हो जाता है प्यार इस अंडरकवर एजेंट शबाना आजमी से। तो कुल मिलाकर ये वाली कहानी भी एक नजर आती है वहां पर। और फिर फिल्म में विलेन तो हैं ही अपने मदन पुरी साहब। ऑल एंड ऑल ये हिट फिल्म थी और इसका म्यूजिक दिया था रविंद्र जैन साहब ने, गाने इसके बड़े कमाल के थे। फकीरा चल चला चल, सुन के तेरी पुकार, महेंद्र कपूर साहब ने इसे गाया था और एक वर्जन इसका हेमलता जी ने भी गाया था। हेमलता रविंद्र जैन साहब की फेवरेट सिंगर्स में से हुआ करती थी। और इसका एक गाना, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, ये गाना बड़ा हिट हुआ था, लता जी की आवाज में था ये गाना। और एक गाना और था, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई, लता जी के साथ किशोर दा की थी आवाज। और इस फिल्म के टाइटल ट्रैक से एक बड़ी रोचक बात जुड़ी हुई थी, और वो ये थी कि इसके जो दोनों गाने थे मेल और फीमेल वर्जन में, वो दोनों ही फिल्म फेयर के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर में नॉमिनेट हुए थे, हालांकि जीते दोनों ही नहीं। फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि इसको लेकर तेलुगु में इसका एक रीमेक बनाया गया जिसका नाम था डोंगलाकू डोंगा। इसमें कृष्णा हीरो थे और जया प्रदा उनकी हीरोइन थी। फकीरा की कहानी बड़ी मजेदार है। फकीरा फिल्म अपने आप में बड़ी अच्छी लगती है देखते हैं तो, और इसके गाने तो हैं ही मजेदार। तो एक काम करते हैं, फकीरा के इन गानों को सुनते हैं अगली फिल्म के जिक्र तक। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, मिलूंगा आपसे इन गानों के बाद यहीं पर। स्टे कनेक्टेड।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
1: वाजी, क्या बात जी?
2: Order today from GG Mart, your personal grocer.

वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। आज हम यादों का कारवां में सिंगापुर गुजर रहे हैं 1976 के साल से, 1976 से। 70s के दौर में एक फिल्म बनना शुरू होती है, नाम उसका रखा जाता है पापी देवता, इसी नाम से वो लॉन्च होती है। लेकिन धीरे धीरे उसका नाम भी बदल जाता है और उसमें बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस भी बदल जाते हैं, जैसे सोचे गए थे वो नहीं रहते। दुलाल गुहा साहब ने इस फिल्म को बनाया था, उन्होंने हीरो के तौर पर अमिताभ बच्चन साहब को लिया और ये उन दोनों की, यानी दुलाल गुहा साहब और अमिताभ बच्चन साहब की एक साथ पहली और आखिरी फिल्म है। लेकिन हीरोइन के तौर पर वो पहले पहुंचते हैं मुमताज के पास, लेकिन मुमताज ये कहकर कि अब वो रिटायरमेंट ले रही हैं, ये फिल्म रिजेक्ट कर देती हैं। फिर ये प्रपोजल वो लेकर पहुंचते हैं शर्मिला टैगोर के पास। शर्मिला टैगोर कहानी पढ़ती हैं और कहती हैं कि ये तो एक नेगेटिव शेड का कैरेक्टर है, ये मैं नहीं कर सकती। वो भी ठुकरा देती हैं इस रोल को और फिर ये रोल पहुंच जाता है रेखा जी के पास। फिल्म का नाम भी अब बदल दिया जाता है। जब ये फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म का नाम होता है दो अनजाने। जी, यही वो फिल्म थी दो अनजाने जिसका अब मैं जिक्र कर रहा हूं और यही वो दो अनजाने थी जहां से ये दो अनजाने अमिताभ बच्चन साहब और रेखा धीरे धीरे करीब आने लगे थे और इतने करीब आने लगे थे कि फिर कहते हैं कि यहां से उनका अफेयर शुरू हुआ था। आई डोंट नो कितना सच है, लेकिन र्यूमर्स की माने तो यही सच है। ये फिल्म और गंगा की सौगंध में तो फिर वो एकदम बहुत जग जाहिर हो गया था कि एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। तो कुल मिलाकर ये दो अनजाने एक जबरदस्त जोड़ी में बदल रहे थे, ये इतिहास बनाने जा रहे थे, ये इन्हें भी नहीं पता था। इस फिल्म में नेगेटिव शेड में है प्रेम चोपड़ा और प्रेम चोपड़ा से पहले ये रोल ऑफर किया गया था कबीर बेदी को। कबीर बेदी साहब ने भी इसे मना कर दिया और प्रेम चोपड़ा साहब की तो क्या कहूं, लॉटरी लग गई, उन्हें ये रोल ही नहीं मिला, बल्कि इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बंगाली डायरेक्टर थे इस फिल्म के, तो लाजमी था कि उनके ज्यादातर कलाकार बंगाली ही हो और कहानी भी कुछ बंगाली बैकग्राउंड पर ही है। तो अमिताभ बच्चन रेखा के साथ इस फिल्म में उत्पल दत्त हैं, प्रदीप कुमार हैं और उनके साथ अनूप कुमार, निपोन गोस्वामी और अभी भट्टाचार्य भी आपको इस फिल्म में दिखाई देंगे। साथ ही इस फिल्म में एक बड़ी ही कमाल की एंट्री थी। जी, शायद बहुत कम लोग ये जानते हो कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने अग्निपथ और गिरफ्तार से पहले इस फिल्म में काम किया था। एक छोटा सा रोल है उनका और ये रोल उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वो जिस रूम में रहा करते थे अपने स्ट्रगलिंग डेज में, वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहा करते थे और प्रोड्यूसर के बहुत हाथ पैर जोड़ने पर उन्होंने एक छोटा सा रोल, घंटी का रोल, मिथुन चक्रवर्ती साहब को दे दिया था। और मिथुन चक्रवर्ती साहब के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि अमिताभ बच्चन और रेखा जी के साथ वो पैदल होटल से सेट तक आते थे और सेट से होटल तक जाते थे। उस वक्त बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो समय स्ट्रगल ही कर रहे थे, बाद में वो खुद भी एक बड़े स्टार बन गए, वो बात अलग है। लेकिन इस तरह से ये एक मेमोरेबल फिल्म बन गई मिथुन चक्रवर्ती साहब के लिए भी। तो चलिए काम करते हैं, मैं इस फिल्म का एक मेमोरेबल सा गाना आपको सुना देता हूँ जो शायद आपको याद हो, किशोर कुमार साहब की आवाज में। और एक बार ये गाना किशोर कुमार और शिवांगी कोल्हापुरी की आवाज में, लुक छिप जाओ ना, आहा, याद आया। तो आइए आप भी रेडियो 24/7 लाइव पर एंजॉय कीजिए इन गानों को, इन यादों को बेसिकली, और इन यादों के साथ हो सकता है कि शायद आपकी डैडी या आपकी मम्मी आपके लिए गाना गाती हो, उन्हें भी ताजा कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर। और सुनते रहिए यादों का कारवां। जाते जाते एक फिल्म का और जिक्र करके जाऊंगा, ये मेरा वादा है, लौट कर आएगा। अभी मैं यही हूँ रेडियो 24/7 लाइव पर, स्टे कनेक्टेड।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

स्वागत स्वागत स्वागत एक बार फिर से आपका। मैं हूँ समर रेडियो 24/7 लाइव पर यादों का कारवां में आज हम बात कर रहे हैं 1976 की सुपरहिट फिल्मों की, और ऑफ कोर्स उनके सुपरहिट गाने तो आपको सुनवाई रहे हैं। इसी फेरिस्त में जाने से पहले एक और फिल्म का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो बहुत करीब है मेरे दिल के, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये फिल्म, फिल्म भी और इसका म्यूजिक भी। ये फिल्म एक बंगाली कहानी पर बेस्ड है जिसे लिखा था सुबोध घोष साहब ने, और इसे डायरेक्ट किया बासु चटर्जी ने और प्रोड्यूस किया राजश्री प्रोडक्शंस के ताराचंद बड़जात्या ने। फिल्म का नाम है चित चोर। जी हाँ, कमाल की थी फिल्म। अगर आपको याद आ गई हो तो अमोल पालेकर इसमें हीरो थे, जरीना वहाब और विजेंद्र घाट के दूसरे हीरो थे। जरीना वहाब उनकी हीरोइन थी, मतलब कहीं एक कंफ्यूजन है। इसी कहानी पर बेस्ड कई फिल्में आपने देखी होंगी। एक तो सूरज बड़जात्या नहीं बनाई थी, बाद में 2003 में आई थिंक मैं प्रेम की दीवानी हूँ। और अगर मैं परदेश की बात करूँ तो परदेश भी कहीं ना कहीं इसी कहानी पर बेस्ड लगती है। अच्छा, इस फिल्म का एक और हीरो था, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, दीपू बोले तो दीपक कुमार अग्निहोत्री उर्फ दीपू, जिसे मास्टर राजू ने निभाया था। कमाल का ये रोल था, और इस रोल के लिए मास्टर राजू को नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर। तो भैया उन्हें तो कैसे बुलाया जा सकता है। और जहां तक इस फिल्म के गानों की बात है, एक से बढ़कर एक गाने थे, और म्यूजिक का पूरा डिपार्टमेंट रविंद्र जैन साहब ने संभाला था, क्योंकि गाने लिखे भी उन्होंने थे और कंपोज भी उन्होंने किए थे। कमाल के ये गाने थे। गानों की बात करूं से पहले मैं अमोल पालेकर साहब के बारे में बता देता हूं आपको कि अमोल पालेकर साहब की ये सिल्वर जुबली हैट्रिक फिल्म थी। तीनों फिल्में उन्होंने शुरू की जो थी वो बासु चटर्जी के साथ की थी। पहली रजनीगंधा 1974 में, फिर 1975 में आई उनकी छोटी सी बात, और फिर 1976 में ये चितचोर। तीनों फिल्में सिल्वर जुबली हिट थी और एक डेब्यूटेंट एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी। तीनों फिल्मों में अमोल पालेकर हीरो थे। अच्छा चलिए, अब म्यूजिक की बात कर लेते हैं। म्यूजिक में जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिपार्टमेंट पूरी तरह से रविंद्र जैन साहब ने संभाला हुआ था, तो उन्होंने अपने फेवरेट सिंगर केजे यशुदास से गाने गवाए। तमाम गाने केजे यशुदास ने गाए हैं, चार गाने हैं, और उनके साथ दो गानों में हेमलता जी की आवाज है। हेमलता जी रविंद्र जैन की फेवरेट सिंगर। और एक और कमाल की बात, केजे यशुदास साहब को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला इस फिल्म के लिए, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा के लिए। और इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड की अगर हम बात करें तो हेमलता जी को एक गाना जो उन्होंने डुएट गाया था यशुदास जी के साथ, तू जो मेरे सुर में सुर मिला दे, उसके लिए मिला 1977 में फिल्म फेयर अवार्ड। बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा नॉमिनेशन इस फिल्म को दो तीन कैटेगरी में और मिले थे, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर भी, लेकिन फिल्म फेयर में तो खाली बाजी हेमलता जी ने ही मारी। अब जाने का वक्त है तो मैं इन गानों का जिक्र कर देता हूं जो इस फिल्म की जान है, और हर म्यूजिक लवर के कलेक्शन में ये होने ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही जुगाड़ कर लीजिए, कहीं से भी लेकर आइए। पहला गाना, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, केजे यशुदास की आवाज में। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, आहा क्या गाना है, बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा और तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, ये तमाम चारों गाने इस फिल्म की जान थे। फिल्म का डायरेक्शन इतना कसा हुआ था, फिल्म की कहानी इतनी बढ़िया थी कि फिल्म छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता है। पूरी फिल्म देखकर ऐसा लगता है कि हम उस गांव में ही बस गए। वैसे आपको बता दूं कि जरीना वहाब का जो गांव जो दिखाया गया है, उनका जो घर है वो पंचगनी में है, महाराष्ट्र में, और पंचगनी और महाबलेश्वर के हिल्स की ही सारी फिल्म में ज्यादातर शूटिंग है। 25 दिन में ये फिल्म कंप्लीट हो गई थी। कमाल की फिल्म है, मौका मिले जरूर देखिएगा। फिलहाल मेरा जाने का वक्त है, मुझे जाने की इजाजत दीजिए, और जाते जाते इन बेहतरीन नगमों को एंजॉय कर लीजिए। कंप्यूटर जी कंफ्यूज हो गए, कौन सा सुनाएंगे कौन सा नहीं सुनाएंगे है? मैं तो कहता हूँ सारे सुना दीजिए, मुझे मालूम आप सुना नहीं सकते क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। तो चलिए इन गानों को एंजॉय कीजिएगा, अभी दीजिए इजाजत, जाते जाते बस वही बातें वही वादे जो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कर दें। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे, और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोगों की यादों में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएंगे। तो चलिए फिलहाल मुझे भी अपनी यादों में याद रखिएगा। मेरा नाम है समर, रेडियो 24/7 लाइव पर मिलूंगा आपसे यहीं पर एक और नए शो में एक और नए साल की बात करने के लिए यादों का कारवां के जरिए। तो फिर मिलेंगे, चलते चलते नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
3: Check it out.

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा।

आँखों से हटाया चश्मा आँखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की

Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
4: मुझे चांद पे ले चलो,
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
4: रात अकेले है। जोश में रहो।
5: महापुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Masti 24/7 Live.
2: Monday blues? Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 AM onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out. Josh
5: mein raho. Mere Karan Arjun aayenge.
6: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे Masti Music Cafe.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: आज प्यार की होड़ी
5: दिल बोले तो
6: हार्ट हार्ट
7: हमारा यार सौदा सौदा
6: ओहो
4: दोनों डील कर
5: टाइट वेरी टाइट

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: नाचने का मन है
3: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
5: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
6: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
5: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
6: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: एक ही रास्ता जिस पे चुपचाप सर को झुकाए हुए बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म, जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं, उनको ये रास्ता लेकर कहीं जाएगा या कहीं भी नहीं। चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग, कोई दीवाना ही होता है जो कि उधर जाता है, वरना बाकी तो सब सीधे रास्ते पे ही अपने सारे जन्म चलते हैं, सर झुकाए हुए, बंद आंखें किए और ये दुख लिए। मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हम, तो न जाने कहां तक पहुंच पाते हम।
1: Tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
2: Dup, dup, dup, dup, dup, dup, dup, dup.

0: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beat

0: करना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
2: चेक इट आउट।
3: They are fresh. They are hot.

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009.
1: अर्जुन आएंगे
2: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।

बेहतरीन, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे, बादशाह के गाने सारे याद है।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे। अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर,
1: क्या
2: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी क्या बात जी,
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
3: एज द सन राइजेस सो डज होप, बिगिन योर डे विद डिवोशन, हार्मनी एंड पॉजिटिविटी विद द डिवोशनल आवर ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे से।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. Every voice begins with a dream, a note that dares to fly. From Singapore to the world, Music Beyond Boundaries Season 4. Watch Music Beyond Boundaries only on Musti AVI, powered by Musti Media Network Singapore. For show timing and more, stay tuned to Radio Musti 24/7 Live. One world, one sound, one love. Music Beyond Boundaries, beyond borders, beyond time.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजे आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

साइकिल। वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दिन में एक बीमार इंसान जिसने सुबह अपनी दुहाइयां करी, दुहाइयां एक के बाद एक मस्ती मैडनेस के टाइम पे, कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये और ज्यादा गिर जाएगी शाम तक, लेकिन फिर भी मेरी पुकार किसी ने ना सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। उफ क्या दिन आ गए हैं।
0: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
3: और आप समझ सकते हो कि सामने इंसान के बैठे हुए भी उसके बाद भी ऐसी चीज के साथ शुरुआत करना कि मेरी तो किसने, मतलब मैं भूत बैठी हूँ यहाँ पर, यहाँ जिसकी आवाज आ रही है इस तरफ से, कि मतलब एक तो इंसान आए उसके बाद कहे कि मेरी तो किसी ने नहीं सुनी है।
2: वो आ गया, देखो वो आ गया। हेलो हेलो, सडनली फील ऐसी आ रही है कि फ्राइडे शाम है और शाम का जाम है और इस शो का नाम है, उफ क्या नाम है इस शो का, मस्ती टॉप चार्ट्स विद अंतरा एंड हाँ रेणुका भी है, और बिल्कुल 8 बजे तक रहेंगे हम आपके साथ। क्यों भाई
3: आपको ये सिर्फ मुझे ऐसा फील हो रहा है, इनकी आवाज अचानक से बदलनी, अभी तक भी इन्होंने शुरुआत वाले इनकी आवाज सुनी थी कैसी, और अभी हेलो हाय। मैं कह रही हूँ मैं ना ऐसे मेरी किस्मत लिखा, कोई ऐसे षड्यंत्र रच कर ही मेरे को लूट के ले जाएगा।
2: जी बिल्कुल,
3: लेकिन ले गया।
2: हाँ लेकिन वो गाना नहीं है नंबर 20 पर, नंबर 20 पर वो गाना है जो तुम्हारे घर वालों ने गाया है।

0: के घर कब आओगे? और इन्होंने धीरे से, मैंने सुना अभी, ये फोन पे बात कर रही थी अपने घर वालों से, कह रही थी यार रेणुका के साथ में शो करना पड़ रहा है यार, वो कह रहे घर कब आओगे कितने
1: तभी मैं इसके... इतनी शातिर रही है। मैंने ना, मेरे आते ही तो मैंने कहा कि अगर मैं कर रही हूँ तो मैंने 20 पे ना इनका बड़ा वो करके मैंने कहा चलो इस बार लगाते 20 पे जाइए सजना, और फिर साथ में वही पे गाऊंगी कि अब इसके बाद तो जाइए सजना ही होगा। मैं काउंट डाउन से पिछली बार तो निकाला था, आज 20 पे ला के फिर निकाल दूं।
0: ना ना ना, आज 20 पे है घर कब आओगे, 10 मिनट का ये गाना आप आराम से सुनिए, हम वापस आते हैं, जरा थोड़ी बहुत चीजें सेटल करनी है। फिलहाल के लिए गाना नंबर 1 की लड़ाई चल रही है हमारे बीच में। गुड evening and welcome to Masti Top Charts with Antara and Renuka.
2: Trending song number 20.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली, बिकॉज सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट। चेक आउट द एनकोर शो स्केड्यूल ऑन आवर ऐप मेन्यू।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: Hollywood Flashback.

0: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, जी हाँ बस यही काफी है जिंदगी के लिए। आप क्या कहते हैं? वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम वंस अगेन, दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स। सडनली मेरी तबीयत ठीक हो रही है।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग।
0: जॉइन अस ऑन।
2: हाँ जी, नो वंडर एंड यू नो व्हाई इनकी तबीयत अच्छी लाल लग रही है। इन्होंने ना पहले कुछ हफ्ते किया, उसके बाद इन्होंने रियलाइज किया कि यार फ्राइडे शाम को बड़ा ही लोनली सा हो जाता है यहाँ पर, क्या करे क्या करे। मैं समझ रही हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना करें, खबरें देंगे आज फुल टू बॉलीवुड। जी हमेशा की तरह अब आ ही गई है तो चल माइट एज वेल वर्क राइट। तो भाई क्या है कि जैकी श्रॉफ, डू यू लाइक जैकी श्रॉफ? अंतरा, डू यू लाइक जैकी श्रॉफ?
2: नॉट रियली, मे बी वन और टू मूवीज।
0: ओके ओके, पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब व्हाट अ जर्नी राइट, चौल से लेकर एक सुपरस्टार वाली जो जर्नी होती है, दैट इज सो अमेजिंग मुंबई के चौल से। बट इमेजिन एक बड़ा ही हैंडसम एंड रिमेंबर द टाइम्स ही वाज द मॉडल एंड ऑल दैट राइट, हैज ही स्टार्टेड,
2: सो
0: बहुत ही कमाल की जर्नी। एंड राइट नाउ ही इज कमिंग एज अ सुपर हीरो फॉर द फर्स्ट टाइम। मनीष सैनी की फिल्म है द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन, मतलब इट साउंड लाइक अ फ्लॉप मूवी नाम से, बट द पॉइंट इज कि इतनी एंजाइटी हो रही थी, ही वाज जस्ट लाफिंग अबाउट इट। ही सेड यार एक बात सुनो, ये पहली बार मैं कर रहा हूँ सुपर हीरो। तो उसने अपने बेटे से पूछा राइट, टाइगर श्रॉफ से जाके पूछा कि भाई तू एक बात बता, तू सुपर हीरो बना था ये फ्लाइंग जट में इन 2016 राइट, तो बता यार ये कैसे बनते हैं सुपर हीरो। तो उसने बोला डैड बड़ा मुश्किल है, वो जो कॉस्ट्यूम है ना वो बहुत गर्म होता है, स्किन बी कांट ब्रीद, इट्स एन ऑर्डील, जितना ईजी दिखता है ना उतना होता नहीं है। एंड इमेजिन जैकी श्रॉफ इज 69 टू प्ले दैट,
2: आई नो
0: That's quite a bit. कहता है कि मेरे हाथ पैर टूटेले हैं, मसल्स फटेले हैं while doing the action. People don't see it, लेकिन recovery में भी time लगता है बिडू।
2: Dude, मैं ये सोच रही हूँ कि रेणुका कब एक अच्छी मूवी आएगी, like कब ऐसा होगा कि जब हम यहाँ पे बैठकर ऐसे इनसेन तारीफ कर रहे होंगे कि यार क्या ही अमेजिंग मूवी, हम वेट ही करते रह जा रहे थे। एक वो आदित्य धर ने, ही हैज मेड द मोस्ट ऑफ इट, उसने कहा एक बार में जब लोहा गर्म है सारे धुरंधर निकाल दो।
0: सही बात है,
2: बैक टू बैक।
0: देखो बहन, आई हेट टू टेल यू दिस, लेकिन नहीं आएगी। ऐ खुदाया ऐ खुदाया, यही वाला गाना आएगा फिलहाल के लिए, गाना नंबर 19। और आज मैं अपना गाना घुसा के रहूंगी, केड़े पासे जाइए सजना, लेट्स सी कौन से नंबर पर,
2: केड़े पासे जाएगा ये, केड़े नंबर पासे जाएगा ये।
0: तू रहने दे।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song number 19.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर, मस्ती पे भक्ति, सुबह 6 बजे।
2: It is on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore. Check it out.
0: And of course, after Gana number 19, जो आपने सुना अभी गिनी विद सनी 2 के soundtrack से, अगला गाना होगा हमारा गाना नंबर 18, जो कि बताने से पहले I would like to give you some more update. Of course, मैं क्यों, हम है ना आज शो पर।
3: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musti Top.
4: हम से इनका मतलब ये दूसरी आवाज जो कि जाना चाहती थी लेकिन इनको जाने नहीं दिया है। पैतरे पैतरे अपनाए गए, पैतरे जिसको कहते हैं।
0: देखो, हमेशा की तरह कहते हैं, एक बार हुआ हो गया, दूसरी बार हुआ तुक्का होगा, तीसरी बार हैट्रिक किए बिना कहां कोई इंसान कहीं जाता है, नहीं तो उसका नाम ही नहीं होता दुनिया में। इसीलिए मैंने कहा अब अंतरा ऐसा है कि देखो, हम तो रिकॉर्ड बनाने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो आज हैट्रिक हो जाएगी तुम्हारी, मजा भी ना जाओ छोड़ कर।
4: देखो गाना भी निकल रहा है, आप सुन रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तक ना इनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, सुबह फ्राइडे वाले शो में तो इन्होंने जाते हुए इतनी ज्यादा रोने वाली शक्ल बनाई कि मतलब आप बिलीव ही नहीं करोगे। और अभी देखो गाने गाए जा रहे हैं, गाने।
0: तो भाई ऐसा है कि कई बार लोगों को लगता है कि ये नहीं कर पाएगा, राइट? जैसे कि इसको लगा शाम का ये शो नहीं कर पाएगी, लेकिन मैंने कर लिया। सैफ अली खान के बारे में भी लोग ऐसे ही बोलते थे कि भाई ये नहीं कर पाएगा, जब उसको लंगड़ा त्यागी का वो ओमकारा का रोल मिला, लोगों ने कहा नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या कमाल, कमाल का किया, मतलब इट वॉज प्रॉबली वन ऑफ हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज, राइट? लेकिन सैफ अली खान अब आने वाले हैं बहुत ही जल्दी कर्तव्य में, विच इज गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स टुडे, बाय द वे, इट शुड हैव बीन रिलीज्ड। सो अब ऐसा है कि कर्तव्य के लॉन्च पे नेटफ्लिक्स की जो पार्टी थी, हाँ, अंतरा एंड दिस गाय ह्यूज वहां पर लगा हुआ पोस्टर, एंड सैफ अली खान ही वॉक्स अप ऑन स्टेज और वो पीछे पोस्टर को देखता है, एंड देन ही टचेस द पोस्टर और फिर हाथ को अपने दिल पे लगाता है, जैसे कि हम भगवान के चरण नहीं छूते हैं उस तरह से। सो किसी ने वो रील बनाई और लिख दिया वहां पर, बना दिया गाना कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। Which was But hilarious.
4: I think दोनों मियां बीवी बिल्कुल सेम ही लाइन पे, you know, करीना कपूर ने भी अपने मूवी में बोला था कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, हाँ। ये भी उसी लाइन पे चल पड़े हैं कि भाई दूसरों का क्या करना है, मैं
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: I will jam myself only.
0: सही बात है। Well. In fact, the other day they were entering some inauguration वाली जगह, and सैफ अली खान ने जैसे एंट्री करी उसने डोरमैन को थैंक यू बोला, और करीना जी तो स्टाइल में अंदर घुसी, she ignored the person who opened the door and just walked straight like a snob. And that is, of course, gana number 18 coming up right now. It says, "Munde kende ne wow." वो तो है, मुझे तो आदत ही पड़ गई है।
2: Trending song number 18. Say wow.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Musty Song of the Hour. Song of the Hour.

0: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7। बरेली की बर्फी से कमरिया ट्विस्टें करा के पहुंच गए हम कारण में 17 और 16 की तरफ। जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर इस समय हो रहा है 5:37 और हम हैं यहाँ पर ऑन।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
2: गेस किसके लिए बोला गया ऐसे? ही इज क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट वी सी ऑन द स्क्रीन। वेरी अग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग।
0: ओह, आई लव दैट बेबी, हु इज दैट? लेकिन सारे के सारे स्क्रीन पे जो है वो असली लाइफ में थोड़े ना होते हैं, इसमें क्या नई बात है? किसकी बात हो रही है?
2: बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस नेम बिकॉज या आई वॉज लाइक की ओह अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। बट नाउ आई फील दैट हो ही सकता है।
0: अच्छा,
2: ही हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह, दी रणवीर सिंह।
0: वाओ,
2: जो अभी धुरंधर के सक्सेस पे। या
0: ओके,
2: कैन यू इमेजिन?
0: नहीं, आई कांट। इज ही दैट डिफरेंट?
2: सो दैट्स व्हाट दिस गर्ल सेज हु हैज बीन अ सोशल मीडिया मैनेजर इसके टीम के लिए। एंड अब तो आई एम श्योर बिकॉज नाउ शी इज पोस्टिंग बिकॉज शी इज लेफ्ट दैट जॉब। बट शी हैज पोस्टेड ऑल दीज थिंग्स एंड एलिगेशंस ये लगाई गई है कि भाई क्रू के साथ जो है इतना जो है ऐसे बिहेव करता है। इज वेरी डोमिनेटिंग, ही इज वेरी अग्रेसिव। थिंग्स आई विश आई वुड हैव डन डिफरेंटली। आई वुड हैव यू नो सीन हिम एज अ क्लाइंट एंड नॉट माई favorite actor. Oh.

0: आएगा कि नहीं. आई डोंट नो, आस्क यू गाइस दिस क्वेश्चन, केड़े पासे जाइए सजना, ये वाला गाना टॉप 20 पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आई रियली वांट टू नो.
1: जाइए सजना, बाय बाय, जाइए, चले जाइए.
2: Trending song number 17.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896।

0: ऑलराइट, ये टाइम हमारा कुछ ऐसा है कि मुझे लगता है यार हमें बात कर लेनी चाहिए अबाउट दी वेरी वेरी इन थिंग. हर तरफ देखो तो एक ही तस्वीर, एक ही इंसान छाया हुआ है. ओह आई मीन छाई हुई है. ऑन रेडियो मस्ती गाइस, दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स.
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप टॉप.
0: कौन है वो?
2: और वो है कौन? रेणुका, जो हर जगह छाई हुई है.
0: I know, ये मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, बट मैं बात कर रही थी आलिया भट्ट के बारे में. थैंक यू सो मच. लेकिन वहां पर अच्छा चलो आलिया भट्ट के बारे में बाद में बात करते हैं. मुझे एक बात याद आ गई कि अनूप जलोटा जी के साथ में जो हाल ही मेरी फिल्म, मेरी फोटोज वगैरह सब मेरे सोशल मीडिया पर है, हमारे सोशल मीडिया पर है. खैर वो फोटोज जो है, वो तस्वीरें जो है, और हमारे ही नहीं अनूप जलोटा जी के अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी हमारी तस्वीरें हैं, विच इज अमेजिंग. जी
2: तो आई नो.
0: तो मैं यही देख रही थी कि भाई क्या हुआ अंतरा, तुम पहले बोल लो क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम
2: सुना. मैं तो गाना याद कर रही थी. हाँ तो फिर केड़े पास से जाइए सजना.
0: फिलहाल हम जिस पासे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो अनूप जलोटा जी की जो तस्वीरें हमने देखी, बहुत कुछ देखा भाई, छाए हुए हैं, हर तरफ छाई हुई है हमारी वो तस्वीरें, और बड़े सारे लोगों ने हमको लिखा भी है, बधाई संदेश भी भेजे हैं उसके बारे में. तो अंतरा जी आपका क्या ख्याल है उन तस्वीरों के बारे में?
2: बहुत ही मेरा ख्याल बहुत ही नेक है, इतना नेक जो आप सोच सकते हैं कि मेरे दिमाग में मैंने कहा क्या बात है. आप हंसी देखिए, आप इनकी खिलखिलाहट, इनकी खुशी का जो अंदाजा जो छुप नहीं पा रहा है उन फोटोग्राफ्स में, आप देखें कि ये इतनी ज्यादा खुश थी अनूप जलोटा जी से मिलकर, जो इनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ है वो अभी तक दिख रहा है
0: मेरा. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना कि जब एक भजन जो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और उसमें मीरा बाई की जगह आपका नाम, वो लेजेंड सिंगर अपना डाल दें, तो भाई दो मिनट के लिए बंदा हिल जाता है कि यार ये इंसानियत बहुत मेरे को थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी, आफ्टरऑल मेरा अब नाम भजन में आ गया है. On Radio Masti guys, it was one hell of an amazing interview. And अगर आपके पास time हो तो please हमारे Masti AVI पर जाकर देखें कि हमारी क्या वार्तालाप हुई थी. और इसी बात पर हो जाएगा गाना नंबर 15 in just a little bit. Radio Masti 24/7 पर वापस आके बात करेंगे आलिया भट्ट की, जिन्होंने कहर मचाया हुआ है कहर खान फेस्टिवल में. जी
3: बॉलीवुड फ्लैशबैक.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: I love you, रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू, किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी।
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
2: क्या जी?
3: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाह जी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 15।

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: राइट, वेलकम टू द सेकंड आवर. जी हाँ, 6 बजने के उस पार चल रहा है हमारा मस्ती टॉप चार्ट्स. और मस्ती टॉप चार्ट्स पर आज सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि क्या था ना, मैं जैसे कि सिंगापुर में पॉपुलरली बोला जाता है, आई वॉन्ट टू बी ऑन MC. भाई ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे होता है कोई?
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर
3: ऐसे होता है जैसे आज हो रहा है दूसरे बंदे के साथ. ऑन दूसरा बंदा, नहीं ऑन दूसरा बंदा तो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड इमेजिनेशन हो जाएगी. बट वेल, गुड इवनिंग, इट्स फ्राइडे सो इट कैन बी एनीथिंग.
1: तो अब ऐसा है भाई कि ऑन MC जो होने वाला था, उसने बोला कि भाई दूसरे आदमी को ले आते हैं, ये थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी हमारे शो पर. तो आज हमारे हेल्प के लिए पहुंची आरजे अंतरा जी. और जब भी आरजे अंतरा मेरे शो पर आती हैं, शी डिक्टेट्स द शो. सो यस, डेफिनेटली द प्लेलिस्ट दैट यू हैव टुडे, द टॉप चार्ट्स दैट यू हैव टुडे, ये टोटली इनकी देन है. पिछले हफ्ते से हमारी एक लड़ाई चल रही है यहाँ पर कि इन्होंने मेरा टॉप फेवरेट गाना पिछली बार बिल्कुल निकाल के दूर तक, इतनी दूर तक फेंका था कि वो पूरे 20 गानों से बाहर निकल गया. तो इस समय हमारी हाथापाई हुई और हमने सोचा कि अगर आज मैं जीत गई उस हाथापाई में तो मेरा वो गाना वापस जरूर आएगा. लेकिन इस समय वोटिंग चाहिए आप लोगों से कि भाई क्या कीड़े पासे जाइए सजना, आना चाहिए टॉप चार्ट्स में वापस या नहीं. गाना नंबर 14 कमिंग अप नेक्स्ट ऑन मसी टॉप चार्ट्स. अंतरा, आना चाहिए या नहीं?
3: मेरी तो शक्ल पे लिखो है नहीं.
1: इसकी कोई खास ही खुंदक है उस वाले गाने से? नहीं तो बता, व्हाई इज इट दैट यू डोंट लाइक दैट सॉन्ग?
3: फ्राइडे को मतलब थोड़ा सा मूड समझ के पे, और ठीक है वो गाना कभी कभी ऐसे चला लो तो समझ में आता है, बिकॉज दैट गाना हैज फील. आई हैव नो दैट थिंग अबाउट द गाना. इट्स जस्ट दैट एक तो ए फ्राइडे इवनिंग को मुझे लगता है टॉप चार्ट्स में ऐसा गाना क्यों ही प्ले करूं, ठीक है. और दूसरा, द रिएक्शन ऑफ रेणुका इज एपिक. ओके, मतलब पिछली बार तो मतलब क्यों मेरा गाना क्यों निकाल दिया ऐसे थोड़ी. And I loved it. I was like, oh, but it did not work. Let me tell you, जी. It did not work. I'm still here. I have come back for this show as well.
1: जी, yeah. Because more than anything else, it's her sadistic pleasure जिसकी वजह से वो गाना वापस नहीं आ रहा है. मेरे ख्याल से मैं एक यहाँ पर मोर्चा निकालना चाहूंगी कि वो गाना टॉप चार्ट्स को बिलोंग करता है या नहीं, ये आप हमें लिख के बताएं. 9151896 पर आपके जवाब मिल रहे हैं और मुझे लग रहा है सब हाँ बोल रहे हैं.
3: ये सेलेक्टिव स्क्रीनिंग चल रही है यहाँ पे.
4: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 14.

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pen.
1: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: मस्ती टॉप चार्ट्स पर इस समय उस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए हमको जो कि मतलब सुर्खियों पर है, और बहुत देर से हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, अबाउट आलिया भट्ट एंड हर डेब्यू तो नहीं कहेंगे बट हर रिप्लेसमेंट फॉर ऐश्वर्या राय। मतलब कैसा लगा आपको वो देखकर?
3: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
4: It was nice. मतलब मुझे तो इतना कुछ खराब नहीं लगा जितना बड़ा इस चीज को ब्लो अप किया जा रहा है इंटरनेट पर कि अरे ऐश्वर्या को हटा दिया और आलिया। अरे तो ठीक है यार, ये होता ही है। लाइक एवरी स्टार हैज दैट, एक मोमेंट होता है जब उसको तख्ती से थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है, एंड दी अदर्स, एंड आई थिंक आलिया भट्ट डिजर्व्स, शी हैज डन रियली गुड जॉब सो फार, अच्छी एक्ट्रेस है। अब उसके पीछे पड़ जाओगे, पिल जाओगे कि नहीं हम तो नुक्स निकाल के रहेंगे, तो फिर करो।
2: हाँ भाई, यहाँ पर आलिया भट्ट के फैंस हैं, लेकिन मैंने देखा है देयर हैज बीन अ ट्रांजिशन इन आलिया भट्ट ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स और अ फ्यू इयर्स, राइट? तुमने देखा है कि कहाँ वो बड़ी स्वीट सी लड़की हर जगह जाके बहुत अच्छी बनती थी, बहुत प्यारी बनती थी, स्पेशली मीडिया के साथ में, और अब हाल ही में काफ़ी सड़ू टाइप बनने लग गई है, काफ़ी हाई हेडेड हो गई, स्पेशली सिंस शी गॉट मैरिड, राइट? एंड स्क्रीन अवार्ड्स में जो शी वॉज ट्राइंग कि भाई मैं तो अब कपूर खानदान की बहू हूँ तो everybody should laugh when I speak, and she was quite silly, frankly she made a fool of herself as well over there. But yeah, talking about replacing Aishwarya Rai Bachchan, mujhe lagta hai that it is time, because Aishwarya Rai aisa lag raha tha jaise Cannes film festival se bore ho gayi hai, right? Because whenever she was coming there now, she was not really bothered about things. सो लोरियल के फेस से किस तरह से वो बड़े से बैनर्स को बिल्डिंग के ऊपर से हटाया गया, ऐश्वर्या राय की फोटोज और आलिया को रिप्लेस किया गया, दैट मस्ट बी पेनफुल, व्हाट डू यू थिंक?
4: मैं तो आई वांटेड टू फायर ऐश्वर्या की जो भी डिजाइनर थी फॉर द प्रीवियस टू कॉन्फ फेस्टिवल जो है, आई वाज सो अनॉयड। भाई इतनी खूबसूरत लड़की, ठीक है, मतलब हम तो ये भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि बंदी खूबसूरत उसको देखो तुमने पहनाया क्या है भाई।
2: बिल्कुल, वो पूरा तंबू टाइप पहना के उसको ले आए थे, बट एनीवे दैट वाज आवर फील। शी वाज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल रूबीज का नेकलेस दो लास्ट ईयर, बट या not the Aishwarya we know. So well, in some way we are pretty glad that Alia's taken over. और यहाँ रह गए मैं और तू, गाना नंबर 13 right now, अभी तक तो नहीं आया केड़े पासे, लगता है टॉप 10 में ही आएगा, आएगा आएगा आएगा आएगा आएगा।
5: Trending song number 13.

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू, किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
4: प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब से धुरंधर 1, धुरंधर रिवेंज ये सारी चीजें आई हैं, तब से लोग फिल्मों के बारे में बात करना बंद हो गए। अगली रिलीज कौन सी है बात ही कोई नहीं कर रहा, सबको लग रहा है बस हो गया, अभी बॉलीवुड का खत्म हो गया और कोई जरूरत ही नहीं है। दिस द अल्टीमेट,
5: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
0: हां, दैट्स बिकॉज देयर इज नथिंग, लाइक क्या करें। एक तो बिकॉज ऑल्सो हमारे पास चॉइसेस इतनी ज्यादा है कि हम भी वो हो जाते हैं, हम भी बड़े पिकी से हो गए ना कि हम नहीं नहीं नहीं दिस वाज ओके, नहीं नहीं वो ज्यादा बेटर था हमारा भी वैसे ही हो गया एकदम।
4: बिल्कुल, तो भाई चलिए एक नजर डालते हैं कि आने वाली जो हफ्ते हैं उसमें कौन सी फिल्में आने वाली हैं। सो वेल, देयर इज वन फिल्म दैट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इज है जवानी तो इश्क होना है, प्रोबेबली वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसमें शायद सबसे वेल नोन एक्टर्स हैं, दैट इज वरुण धवन द लीड, एंड जो उनकी लास्ट रोम कॉम थी ना सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जो 9 crore पर खुली थी एक्चुअली, बट दैट वॉज ऑन अ हॉलीडे, ड्रॉपिंग टू 5.5 crore नेट नेक्स्ट डे। अब ये वाली फिल्म पहले तो 22 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन तब था क्लैश विद चांद मेरा दिल, और फिर उसके बाद में इन्होंने शिफ्ट कर दिया 5 June को। तो क्या ख्याल है तुम्हारा अंतरा, शर्त लगाए होगी नहीं होगी सुपरहिट?
0: सुपरहिट आपको ज्यादा ग्रेशियस नहीं हो गए बोलने में? While, like I don't know whether it will be a hit or not as well. So, तो super hit तो बहुत दूर की बात है, and this is exactly what I am saying that, you know, अब तो ऐसा हो गया है कि किसी का trailer देख के लग जाता है कि भाई I don't know where you are going. Like, I don't feel it already.
4: Actually, लेकिन चलो वो तो हुई जून की बात, फिलहाल के लिए आज की बात कर लेते हैं। आज रिलीज हुई है पति पत्नी और वो दो, जिसका अगला गाना है हमारे गाना नंबर 11 पर। लेकिन फिलहाल 11 की बात नहीं हो रही है, 12 की हो रही है, वहां पर धुरंधर फिलहाल टिके हुए हैं। Alright, Radio Masti 24/7 पर अंतरा जी, मुझे लगता है आज आप बड़ी दयालु बनी है और आपने नंबर 1 वापस जाइए सजना किया है, किया होगा, आप अच्छी इंसान है, मैं जानती हूँ आप अच्छी इंसान है, आप करेंगी, केड़े पासे जाइए सजना, only top 1, yes, coming up.
3: Trending song, number 12.

0: कभी हमको जब फिल्मों के नाम रखने होते हैं ना, तो सोच समझ के रखने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फिल्मों के नाम सच भी हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी डेज दे रन ऑन द बॉक्स ऑफिस. जैसे कि फिल्म एक दिन.
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
2: ये तो उनकी वाली नहीं है, जुनैद खान की. जुनैद हमारा आमिर बेटा जुनैद.
0: बिल्कुल बिल्कुल वही है जिसमें आमिर खान ने फिर से एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाई थी और 39 डेज पहले बुकिंग्स शुरू कर दी थी, जबकि पता नहीं था लोगों को कि क्या होने वाला है, राइट? सो उसको लगा कि नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगा देते हैं. भैया तू इतना दिमाग मार्केटिंग में मत लगा, तू पहले दिमाग फिल्म बनाने में लगा दे. तो आमिर खान की लेटेस्ट प्रोडक्शन वेंचर, उनके बेटा जुनैद खान एंड साथ में ही सई पल्लवी, जो कि सीता माँ बनकर आएंगी रणवीर कपूर के साथ में बहुत ही जल्द रामायणा में, 4 करोड़ कमाए उस फिल्म ने. और वो फिल्म एक दिन चली और फिर उसके बाद वो चली गई. एंड आई एम नॉट सेइंग एक दिन बट लिटरली एक दिन. द ऑडियंस वर नॉट इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ डल बॉक्स ऑफिस रन. कहीं भी ग्रोथ नहीं नजर आई, जैसे आई वैसी चली गई, आधे लोगों को पता भी नहीं लगा, और 10 दिन के अंदर अंदर कोई फ्यूल नहीं एंड ऑफकोर्स खत्म. तो तुम्हारा क्या ख्याल है अंतरा, हमने शर्त लगाई थी इस वाले पे कि ये बढ़ेगी आगे या नहीं बढ़ेगी?
2: तो मैंने तो बोला ही था, मैंने तो पिछली बार ही बोल दिया था कि एक दिन ही है भाई. एंड जिस हिसाब से आई थिंक आमिर खान आल्सो हैज टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द वे ही हैज टू डू द प्रमोशंस एज वेल, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुमने कह दिया है कि साई पल्लवी इज द बेस्ट एक्ट्रेस
0: जी
2: इंडस्ट्री हैज राइट नाउ.
0: बिल्कुल नहीं, कहने से
2: ओके. Yes.
0: Actually, more than that, it was the thing कि भाई रामायणा में उनका बॉलीवुड डेब्यू नहीं हो रहा है, उनका बॉलीवुड डेब्यू हमारी फिल्म के साथ हो रहा है. एंड ही ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड दैट इस बात के साथ में बड़े लोग खुश हो जाएंगे और भर भर के देखने के लिए आएंगे.
2: साई पल्लवी had to face the backlash because of it. एक दिन में everybody got to know साई पल्लवी का हिंदी is not that great.
0: Exactly.
2: Now everybody is after her life. अब रामायणा में जहाँ पे पहले उसकी ओरिजिनल आवाज जा रही थी, नाउ अब उसकी डब्ड आवाज जाएगी.
0: So, whose loss? बिल्कुल, her loss, absolutely. उसने सोचा था रामायणा में सिर्फ सीता माँ को हंसते ही रहना है, लेकिन हंसने के अलावा और भी कुछ करना है ना. एंड दैट इज गाना नंबर 11, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फ्रॉम पति पत्नी और वो दो, फॉलोड बाय द नेक्स्ट ट्रैक विच हैज रियली रियली गॉट 4-5 सीढ़ी ऊपर दिस वीक, एंड इट्स कॉल्ड येट अनदर वर्जन ऑफ छाप तिलक. कमिंग अप नेक्स्ट, रेडियो मसी 24/7.
3: Trending song number 11.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
1: Trending song number 10.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
3: Check it out.
4: एक डिजास्टर के बाद दूसरा डिजास्टर। जी हाँ, और यहाँ पर बात हो रही है कि आपकी सुबह और आपकी शाम दोनों हमारे साथ ही बीत रही है आजकल पिछले 3 हफ्तों से।
5: यस, ये डिजास्टर है।
4: इट्स अ ह्यूज डिजास्टर फॉर श्योर।
6: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग।
4: रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स। जी हाँ, विद रेणुका एंड अंतारा। मैंने इसको बोला जा जा जा, but she just refused.
5: मैं कह रही हूँ आप लिखवा लो मुझसे, इनके ना दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है। कुछ दिनों बाद मुझसे कहेगी काम कर अंचल, तू तो कर ही रही है मेरे साथ, एक काम का प्रोमो में भी अपना नाम डाल दीजिए। थोड़े दिनों बाद यही एकदम ऐसे एकदम स्लाइड करते हुए मेरे को देंगी, लाइक हो ही रहा है।
4: तुमने देखा नहीं आज हमारे सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है उस पर क्लियरली लिखा है ये मेरा शो है, दिस इज माय शो, चले जाओ यहां से। लेकिन आज अंतरा को यहां पर किस बात पे लाया गया है, अब देखिए। गाना नंबर जो अगला चलेगा वो है 9।
7: तनु शरारत से काम आजा तो नेड़ा लड़ा।
4: और इसी गाने से, शरारत से इंस्पायर होके मैं ये बता सकती हूँ कि अंतरा ने इंसिस्ट किया कि अगला गाना ये होगा।
8: वो सारियां वे सर गया रामा वे खेड़े पासे जाइए।
4: Yes! केड़े पासे इन द हाउस गाइस।
8: सानू सारियां वे
4: आज केड़े पासे इन द हाउस। मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे। बताओ क्या अंतरा कुछ कह रही थी?
5: हाँ, बोलो, कुछ नहीं है। हाँ। ये कुछ नहीं, आज कॉन्सोल पे उस तरफ बैठी हुई है और सब कुछ इनके अभी इन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। एंड शी वॉज वेरी क्लियर एंड प्रिपेयर्ड अबाउट इट टुडे कि भाई पिछले हफ्ते का जो है रिवेंज ऐसे लिया जाएगा। इन्होंने कहा, अच्छा मैंने तो उनको पहले 20 में डालने को कहा था, फिर मैंने बोला कि चलो 15-16 पे लगा दो। अच्छा? मानी नहीं, कितने टॉप 10 में ही आएगा, मतलब टॉप 10 में ही आना चाहिए।
4: हाथापाई हो रही थी आज तो, मैं निकल पड़ी थी पूरे के पूरे अपने सारे हथियार लेके। मैंने आदमी भी बुला लिए थे कि अगर इसने आज ये बोला कि नहीं टॉप 10 में भी नहीं आएगा केड़े पासे, तो मैं तो पता नहीं कहां जाऊंगी। सो ऑफकोर्स द गाना हैज ऑलरेडी री एंटर्ड मस्ती टॉप चार्ट्स, एंड चाहे नंबर 1 से उसको निकाल के पार्शियलिटी की वजह से टॉप 20 से निकाल दिया था।
5: शेड टियर्स ऑन अ फ्राइडे इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी थोड़ी देर में, मतलब सोचो फ्राइडे इवनिंग को आप लोग सब केड़े पासे चाहिए सजड़ा जाए जाए।
4: गुड म्यूजिक, गुड म्यूजिक, लवली, मिलते हैं।
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 9।

0: It's time for the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.
1: Namaste, Adab, and Sat Sri Akal. Very warm welcome to the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जितेश, जो लेके आता हूं डेली आईपीएल अपडेट्स मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे. सो बात करते हैं कल के खेले हुए मैच के बारे में. तो ये मैच था ब्यूटीफुल धर्मशाला के ग्राउंड पे, जहां पंजाब किंग्स का आसान मौका था टू इंश्योर देयर प्ले ऑफ पोजिशन अगेंस्ट द एलिमिनेटेड मुंबई इंडियंस टीम, और वो जीतने भी वाले थे विद MI नीडिंग 50 ऑफ 3 ओवर्स इन देयर चेस. मगर ये हो न सका और पंजाब को मिली लगातार पांचवी हार. एंड नाउ दे हैव टू विन बोथ देयर रिमेनिंग गेम्स. अब तो दिल्ली दूरी लग रही है. सो पंजाब किंग्स बैटेड फर्स्ट, दे मेड 200 फॉर 8 इन 20 ओवर्स विद प्रभसिमरन स्कोरिंग 57 ऑफ 32 एंड ओमरजाई 38 ऑफ 17 बॉल्स विद लॉर्ड शार्दुल टेकिंग 4 फॉर 39 रन्स फॉर मुंबई इंडियंस. It was looking a very good score, but in reply, Mumbai Indians made 205 for 4 in 19.4 overs, with Tilak Varma not out of 75 of 33 balls and Rickleton giving them a great start with 48 of 23 balls. Last over, 3 chakke Tilak Varma ke aur match khatam. Punjab ki bowling needs serious thinking now. For full breakdown of these matches, watch me with Santosh and Neil on Musti AVI every Monday and Friday 8:30 PM. Go to the Musti AVI tab on our app and watch all episodes anytime, anywhere. मैं हूँ जितेश और हम कल नहीं अब सीधा मंडे को मिलेंगे with more masala, more cricket and more IPL action for the games which will happen on the during the weekend and tonight only on Radio Musti 24/7 Live.
0: The Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.
2: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musti Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musti Top 20. Only on Radio Musti 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
3: होता है मेरी तो आंखों के आंसू अब तक नहीं रुक रहे केड़े पासे जाइए सजना. बट गुड म्यूजिक ऑलवेज ब्रिंग्स टियर्स टू द आईज डजंट इट लेडीज एंड जेंटलमैन. वेलकम बैक. फ्रॉम रॉकिंग द चार्ट्स टू रूलिंग द वीकली काउंटडाउन, जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20.
4: बट व्हाई ऑन अ फ्राइडे इवनिंग, दैट इज माय क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन. यू कैन फील फ्री, डरो मत इनसे. हाँ बिल्कुल मत डरना, आराम से बिंदास होकर 9151896 पे लिख भेजो कि ये गलत है रेनुका और गलत को एडमिट कर लेना चाहिए.
3: 20 में से 19 गाने आपको नचा सकते हैं, लेकिन वो एक गाना जिसमें डेप्थ है, जिसमें दर्द है, जिसमें इमोशन है, जिसमें उफ दुनिया भर का प्यार है और उसमें सुर है और उसमें उफ बड़ा ही मीनिंग है, वो है ये गाना केड़े पासे जाइए सजना. एंड आई हैव डिसाइडेड दैट नेक्स्ट वीकेंड फ्राइडे को अंतरा जाएंगी किसी और पासे और मैं यहाँ आऊंगी और ये गाना आएगा टॉप 2 में फॉर
4: श्योर.
3: अब भाई उस पासे जाएगा जहां पर गिनी विद सनी 2 नहीं गया है, उस पासे. राइट, सो अविनाश तिवारी और मेधा शंकर इन द लीड रोल्स. अब भाई जब ऐसे नाम होंगे तो कोई जानता नहीं है, कुछ लेना नहीं देना नहीं. प्रशांत झा ने डायरेक्ट कर दिया, 1 करोड़ कमा के पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ कमा के डिजास्ट्रस एंड करके रोम कॉम खत्म हो गया. तुमने सुना भी इसके बारे में, ये कौन सी फिल्म है?
4: मैंने ए सुना नहीं है, बट मैंने इसका जो फर्स्ट वाला जिनी विद सनी जो पहले वाला आया था वो गलती से देख लिया था. सो आई वाज क्वाइट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मुझे ये देखना नहीं है. वो क्लैरिटी मुझे पहले आ गई थी उसको देखने के बाद में. बट देन एक बहुत डिफरेंस भी है. पहले क्या होता था कि पहले जैसे कोई नई मूवी का कोई रिलीज, तो हम चाहे कुछ भी हो जाए हम जाके, हमें मेंटली होता था कि कुछ नहीं है, जाके एक बार देख तो देते हैं. एंड दैट यूज्ड टू डिसाइड वेदर इट्स अ हिट और अ मिस. आजकल वो सीन ही नहीं है. हम पहले ही सोच लेते कि ये तो भाई ये ना चलेगी।
3: हाँ, तो क्योंकि अब हम स्मार्ट भी तो हो गए ना, हमें पता है कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। इतनी फिल्में तो देख ली यार, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बट अगला गाना येट अगेन धुरंधर के साउंड ट्रैक से। हाउ इज दिस गाना नॉट सैड एज कंपेयर टू द गुड सॉन्ग विच इज एक्चुअली वन बिलो दिस पार्शियलिटी एट प्ले येट अगेन। क्या
4: मुझे लगा कि ये वापस से अपना गाने इस नंबर पे भी लगा देगी इनका बस चले आज को, कि नहीं आज को तो काउंटडाउन में तो दो बार चलाएंगे हम उसको।
0: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
1: Check it out.
0: Trending song number 7.

0: change is close to me. Or is it all destiny? Destiny, don't lie to me.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर,
1: क्या जी?
2: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
1: वाजी क्या बात जी.
2: Order today from GG Mart, your personal grocer.
3: It's time for
4: Masti Song of the Hour.

0: do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: ऑलराइट जी हाँ बिल्कुल, अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 6 गानों की तरफ और इन 6 गानों में डेफिनेटली मेरा गाना तो है नहीं, इसलिए अब मेरी तरफ का इंटरेस्ट एब्सोल्युटली मिनिमल हो चुका है ऑन मस्ती टॉप चार्ट.
4: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20.
5: तो दोस्तों, मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि गाना नंबर 1 जो है वो वहां से हिला है जो पिछले हफ्ते था वहां से हिला है कि नहीं हिला है, गिवन दैट दिस लेडी इज सिटिंग ऑन दैट साइड ऑफ द कंसोल.
3: नहीं, इतनी भी हिम्मत नहीं है, मैं सिर्फ एक गाने के लिए लड़ रही थी और वो गाना आ चुका है आज के दिन में 8वें नंबर पर. दैट्स ओके, इट इज अ लकी नंबर व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगापुर. सो इस लक के साथ वो आगे बढ़ेगा एंड लक 28 कुरीदा 47 वेट कुरीदा करते करते वो आगे जाएगा नंबर 1 पर बाय नेक्स्ट वीक. दैट इज फॉर श्योर. व्हाट डू यू थिंक लेडीज एंड जेंटलमैन?
5: बट आई रियली गॉट इंस्पायर्ड. हाल फिलहाल में देयर आर पीपल हु हैड सेंट अस गाने के रिकॉर्डिंग, अपना गाना मतलब मस्ती पे चल रहा है और साथ में गा के.
3: जी,
5: आई रियली गॉट टच्ड एंड इंस्पायर्ड बाय दैट. सो उससे हो सकता है कि थोड़ा सा मेरे हृदय परिवर्तन हो.
3: आपका हृदय परिवर्तन हो ठीक है, आप गाना मत बस. दैट्स द ओनली थिंग दैट आई रिक्वेस्ट.
5: ये तो दिस इज मी एंड मिस अद्वारो का ऑल टाइम एंड वी विल डू इट द डे वी मीट. नाउ वी बोथ विल रिकॉर्ड एंड वी विल पर्सनली रिकॉर्ड इट फॉर रेणुका एंड सेंड इट टू हर. उनका रिंगटोन बना देंगे, रिंगटोन.
3: मैंने ऑलरेडी आरती अद्वारो को बोल दिया है कि भाई साहब आप गाना मत गाओ. उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा, मैंने सुना. थैंकफुली उन्होंने ट्रैक के ऊपर गाया है. अगर सिर्फ उनकी आवाज होती तो शायद आज मैंने यहाँ से अपनी ही कंपनी से रेजिग्नेशन दे दी होती. And that is the title track of Dhurandhar playing on number 6, followed by number 5. जी बिल्कुल, तो पुराने जमाने में जैसे कहेंगे कि कैसेट लगा दे फिल्म का और चले जा.
5: तो अब ये घंटा तो ऐसे ही लग रहा है कि साइड ए के सारे गाने चल रहे हैं.
3: बिल्कुल, साइड भी अपने आप चेंज हो जाएगा. हम चलते हैं यहाँ से. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आगे के गाने सुन लो.
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 6.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this.
7: Na de dil par de teenu tan nit da rona.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Trending song number 5.

0: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se. राइट सो अंतरा जी, मुझे लगता है कि इस टाइम पर मसी टॉप चार्ट्स पर सबको बताया जाए कि आने वाले चार गाने कौन से हैं और इनमें से इनको मौका दिया जाए कि गाना नंबर एक कौन सा होने वाला है आज के दिन में.
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: जी, needless to say, पिछली बार जो गाना नंबर एक था वो इस बार भी definitely it's in the run. गाना नंबर वन आउट ऑफ द ब्लू ब्लैक रेड व्हाटएवर कलर्स इन द वर्ल्ड ये पहुंच गया था नंबर वन पे. जी जी जी,
2: एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड इट बाय द वे.
0: एवरीबॉडी कौन है, ये खुद ही है एवरीबॉडी.
2: बट दिस इज फन. ओके, क्योंकि चार गाने यहाँ पे प्ले हो रहे हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू अभी कि कौन सा जो है कौन सा नंबर पे है, बट यू हैव टू टेल अस दैट व्हाट डू यू थिंक 1, 2, 3, 4 कैसे होगा.
0: जी, तो अभी अभी हमने चलाया वन ऑफ द सॉन्ग्स व्हिच वाज ऑन नंबर वन लास्ट वीक. क्या वो इस बार भी होगा कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन बाकी के गाने हैं ये वाले. जान से गुजरते हैं धुरंधर, द रिवेंज. और उसके अलावा अगला वाला गाना है बॉम्बे रॉकर्स का आरी आरी. एंड ऑफ कोर्स द गाना जो आरती जी ने गाया है इस वजह से वो अभी भी टॉप फोर में टिका हुआ है एंड दैट सॉन्ग इज गहरा हुआ, गहरा हुआ. ये काफी देर तक ठहरा हुआ था नंबर वन पर, लेकिन एज आई सेड इन्होंने आके सब कुछ हिला दिया. सो ऑन रेडियो मस्ती गाइस, कौन सा होने वाला है नंबर 1?
2: मेरे दोस्त का भी फेवरेट गाना था. मतलब पिछले हफ्ते के शो में आपकी आवाज सुनते सुनते वो इतना डरा हुआ था कि कहीं अंतरा ने ये गाना भी किक आउट तो नहीं कर दिया.
0: और मुझे पता है आप डॉक्टर डैंग की बात कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज डॉक्टर डैंग, पहली बात तो आप ये देखें कि आपकी इज्जत ज्यादा है यहाँ पर मेरे चॉइस ऑफ इज्जत से गाने से कहीं ज्यादा. तो मैं सोचने लग रही हूँ कि अगली बार से सैलरी आप ही के अकाउंट से डेबिट करी जाए. अंतरा की क्या ख्याल है इस बारे में?
2: किसी के भी अकाउंट से आए मिल जानी चाहिए.
0: डू टेल अस, गाना नंबर एक आपकी तरफ से कौन सा होने वाला है आज के दिन में? लेट्स सी इफ यू नो इट. Bollywood Flashback.

0: ऑलराइट, तो भाई एक गाना तो आपको पता लग गया जो निकल गया, बच गए हैं तीन गाने, उसमें से नंबर एक कौन सा होने वाला है? वेल वी लीव दैट टू यू एंड योर एक्सपीरियंस्ड इयर्स, क्योंकि आप इतने सालों से इतने महीनों से ये वाला शो सुन रहे हैं, यू शुड नो कौन सा गाना नंबर एक पर जाएगा आज के दिन में। गुड इवनिंग एवरीवन।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
2: None of your Masti Top Charts experience is going to work here. It is how well you know both of us. That is what is going to work for you.
0: That is true. But I can tell you behind the scenes, यहाँ पर काफी लड़ाई हुई है आज के दिन में, काफी argument, काफी लड़ाई कि भाई ऐसा तुम बार बार नहीं कर सकती हो, I cannot do this. भाई ठीक है, मेहमान आता है अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट भी करता है घर में और लोग भी एडजस्ट करते हैं, लेकिन मेहमान आके लूट तो नहीं लेता ना घर कि हर चीज अपने हिसाब से करेगा। तो आज मैंने कह दिया मेरा शो है और मैं भी कुछ ना कुछ बोलूंगी। तो अब जैसे कि आप जानते हैं तीन गाने रह गए, हम दोबारा नहीं सुनाएंगे, पर आप बताइए नंबर एक कौन सा है आज के दिन में। मीनवाइल आई वांट टू टॉक अबाउट दृश्यम 3। अंतरा, डू यू लाइक दृश्यम एज अ प्रॉपर्टी, पसंद है या नहीं?
2: I loved it. Like, dono parts. And I have seen the original Malayalam ones as well.
0: Right.
2: I am a fan of the kind of writing they do. The script is very good. And also, jo kirdaar wo log nibha rahe hain, that is also very good. Mujhe achha lagta hai, is tarah ki movies mein mujhe bahut hi interest aata hai, if done well.
0: Exactly.
2: Isi liye, this is one of the movies I am really looking forward to. Ki bhai, ab Drishyam 3,

0: जी, और अभी भी 8 दिन रहते हैं इस फिल्म को रिलीज होने में, एंड मोहनलाल जो है ऑफ कोर्स ही इज ऑल एक्साइटेड कि भाई इस बार भी जॉर्ज कुट्टी क्या लेकर आते हैं। क्राइम थ्रिलर ड्रामा अमेजिंग, हिंदी का October 2 एज एक्सपेक्टेड 2 अक्टूबर को ही रिलीज होगी। तो हाँ, उस दिन हम पाव भाजी खाएंगे, हम फिल्म देखेंगे और एक आदम
1: but you have to go and watch the original Awada. You will, it's insane how well it is done, like cinematography ke angle se aur acting ke angle se every single moment Mohanlal is amazing.
0: I tell you, he's out of this world. But on Radio Masti guys, aap amazing hai ki nahi ye hame pata lagega agle 3 gaano mein se number 1 kaun sa hone wala hai. Let's see if you can guess it. Good evening.
2: Trending song number 3.

0: नहीं, कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है। मैं तो भाग रही हूँ उससे पहले कि नंबर एक यहाँ पर बजे। मैं बता रही हूँ, मुझे अपने ही शो पर पिटने का कभी इतना डर नहीं हुआ जितना इसके साथ को होस्ट करने में हुआ है पिछले 3 हफ्ते से।
1: They are fresh, they are hot, they are spicy and they are happening. Join us on
0: नाक से पानी, आंख से पानी, मतलब कहीं कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी है जहाँ से, मतलब जगहें तो बहुत है खैर, बट ऑलरेडी 24/7। हाँ तो अंतरा जी, कौन सा गाना होने वाला है नंबर एक पर, बताइए, जा रही हूँ मैं यहाँ से।
2: हाँ तो आई थिंक सबने गेस तो कर ही लिया है, एंड दिस इज माय लव टुवर्ड्स ऑल ऑफ द पीपल हु वर इन लव विद दिस गाना कंप्लीटली। सो मेरा भी प्यार थोड़ा सा गहरा हुआ।
0: तो अंतरा जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी कि पिछले हफ्ते आपने किस बिना पर इस गाने को आपने नंबर दो पर किस बिना पर रखा था जो इस बार नंबर एक पर होने वाला है? क्या आपका क्राइटेरिया?
2: मेरा प्यार, मेरा लिसनर्स के लिए प्यार इतना ज्यादा है, तो आई हैव केप्ट number one as today and I have sacrificed my favorite number one and moved it to number two.
0: आपको पता है, आप सब जो सुन रहे हैं इस टाइम पर, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर पूरा का पूरा एक साइंटिफिक तरीके से बिग डेटा के जरिए मैं यहाँ पर पूरा का पूरा पोल करके पता लगा के सारी दुनिया में कि भाई कौन सा गाना नंबर एक पर होना चाहिए, वो सब करती हूँ, मेहनत करती हूँ। ये लड़की आती है बोलती है मेरा मन है आज ये होगा तो बस यही होगा। Yes, मैंने बड़ी मेहनत करके, हाथापाई करके इस गाने को नंबर दो पर पहुंचा दिया आज। और वही गाना जो बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरे शोज पर, गहरे तरीके से आज पहुंच गया है नंबर एक पर।
2: This is for all my dear listeners. I love you all.
0: जी, अब love you all हो रहा है। अभी तो इस शुरू में लड़ रही थी मेरे साथ, बोल रही थी मैं नहीं होने दूंगी इसको नंबर एक पर। पीछे की बात बताऊं तो मैंने रिकॉर्डिंग्स करी है, अलग से भेजती हूँ आप लोगों को व्हाट्सएप पे।
2: मांग लो।
0: Time for us to say goodbye. I hope you enjoyed this series, this episode of Masti Top Charts. बहुत ही मजा आया, लेकिन I promise अगली बार से मैं इसको नहीं आने दूंगी। अब तो मैं खुद ही regret कर रही हूँ अपने शो पर किसी और को लाके।
2: अगली बार बुलाया दो, मैं इनके सारे गाने इस लिस्ट में से बाहर निकाल दूंगी।
0: देखा, धमकी देखी आपने, ऐसे ही बदलते हैं मेरे गाने।
3: Trending song number 2. Oh, yeah.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल. इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
1: तुमको
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
2: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेले
3: जोश में रहो।
0: The perfect recipe for you to unwind. Masti weekends only on Radio Masti 24/7 live.

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, मस्ती 90s mixtape with आपकी 90s वाली अंतरा, Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: It's the best of Bollywood playing on Radio Mercy 24/7 Live. Have a मस्ती भरा वीकेंड.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: आना चाहिए। आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती बॉयज आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Musti 24/7 Live.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: रात अकेली है तो क्या हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो। As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the devotional hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
1: रात अकेली है
0: तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।

कहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा।

0: चाहे और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो.
2: What is your behavior of choice this evening? Do I sound a little cheesy?

सुन लिए आपने यूपी के बोल, आता ऐका महाराष्ट्र से ठोर।

राह पे जिस तरह शाम का

0: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: मन्नु, लेट्स गो।
2: चलो। सब चले गए, प्रश्न नहीं उठता, मैं तो सो ही जाता।
1: अरे बाहर निकलो।
2: ये आप मुझे कहाँ ले आए?
1: ये आप बंद करो।
2: सॉरी।
1: चौकी कमा लो। जगह कैसी?
2: बड़ी प्यारी जगह। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
2: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
2: जैसे?
1: कर सकोगे?
2: मैं हर काम कर सकता हूँ।
1: सोच लो।
2: सोच लिया।
1: और अगर ना कर सकी तो?
2: हार मान जाऊंगा।
1: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
2: क्या?
1: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
2: टोकरी?
1: मंजूर।
2: मंजूर। काम तो बताइए।
1: जरा सोच तो लूँ। वो देखते हो? वो?
2: हाँ।
1: क्या?
2: मुर्गी।
1: हाँ, पकड़ लाओ।
2: मुर्गी?
1: हाँ।
2: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

0: Let's go. You already know.
1: मेरी आशिकी चाहूँ मैं

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than life. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh me rojo, rica ustara, rica stara rira kukaru, rica ustara, rica stara rira kikaru.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009.
1: The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
1: आई लव यू रसना,
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.